0: UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
1: तकरीबन 12 स्टेट्स थी जिसमें नक्सलिज्म चिदंबरम साहब होमलेस पर थे सबसे ज्यादा अगर फैला तो इनके एज ए होम मिनिस्टर वो फैला है और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है भी वो नक्सलिज्म खत्म कैसे हो गया.
0: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
2: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है चुनौती देता है वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
3: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
0: India has signaled a big win in its bid to eradicate the Red Terror. The ramp walk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
4: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre for fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
0: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
5: 80 saal ke baad Bankim Babu ka ye amar mantra amar gaan jab phir se सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है.
6: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করব. এই হাই অ্যাপ্রিচমেন্ট কা পলিটিক্স হে জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হে ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হে এক খাস ভোট ব্যাংক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হে.
0: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
7: Sonia Gandhi ne jo harkat ki hai wo bahut sharmnak hai. Ye desh ke liye apaman hai. Ye pura Bharat ke liye apaman hai. Bengali jati ka apaman hai. Aur mera parivar ko to baat chhodiye. Hum log to bahut hi byathit hue hain.
0: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song, but was seeking a chair for party chief, but later admitted that Sonia wanted Bande Mataram to stop.
8: पूरा वचन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहां कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
9: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
0: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
10: Mere pyare deshvasiyon,
0: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
10: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
0: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
4: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में आप उसको कैसे देखते हैं
11: एक्चुअली देखिए सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया सोनिया जी ने वही किया हम इसका जो क्या बोले उसको हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है एकदम घृणोने आदमी है ये वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया पूरा देश का अपमान किया देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है वो जातीयतावाद के विरोध है वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है ये हम मान नहीं सकते हैं
4: तो कांग्रेस का ये कहना था कल जब ये वीडियो पहले आया था कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे क्या आप इस चीज से अग्री करते या सहमत है क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में तो ठीक है जाने दे सकते हैं क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं
11: नहीं एकदम बिल्कुल झूठ बात है ये सहमत नहीं है इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं सोनिया जी जब मुंह घुमा के इधर-उधर देख रहे थे वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो उसके बगले में तो राजीव आपका
4: राहुल गांधी
11: जी भी खड़े थे जब वंदे मातरम हो रहा था ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
4: जी।
11: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
4: कल,
11: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
4: आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़ा गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। कल जयराम रमेश जी इस चीज पर रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग, क्या आप इस चीज को मानते हैं?
11: देखिए सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है इसका। जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह कि इसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
4: जी।
11: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
4: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
11: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
4: जी, आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
11: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे, एपोलॉजी का क्या बात है? वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसको एपोलॉजी का क्या बात है? उसका वो तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है, तो गलती।
4: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
11: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
4: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
11: 100% खाए को, ये देश का सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है, इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन, किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। हम कुछ कर पाए ना पाए, हम इसमें सहमत नहीं है।
4: एक एक आखिरी आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
11: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को, तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया, वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
4: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स। ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
12: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
4: Bollywood stars Ajay Devgan, Shah Rukh Khan and Tiger Shroff have received notices from the Maharashtra FDA over a Vimal Elaichi advertisement. The food regulator suspects the ad could amount to surrogate advertising for Vimal Pan Masala, which is prohibited in Maharashtra. FDA has given 15 days to the actors to explain their roles as brand endorsers. The FDA has in fact warned that legal action could follow if the advertisement is found to be misleading. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Sriya Kundu. Stay tuned.
13: You are watching India Today.

0: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this, and she now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable, and Bharatiya Janata Party condemns it.
1: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. Chalu gaan mein Congress ki netri Sonia ji ne Congress adhyaksh ko rokna gaan rokne ka kaha. Hum sab TV par dekhte reh gaye. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
2: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है. ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए. हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से. और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं. मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को. देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं.
3: तार परिवार गतकाल रात ही रिएक्ट करे मेल करे माननीय सोनिया गांधी के, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के जानिए. তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করবেন. এই হাই অ্যাপ্রিচমেন্ট কা পলিটিক্স হয় যে 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হয় ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা এক খাস ভোট ব্যাংক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হয়.
4: ইউ আর ওয়াচিং ইন্ডিয়া টুডে.

0: Welcome back, viewers. We're beginning the segment with breaking news coming in. This is from down south, specifically from the state of Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay has now come out to react to the Karnataka killings. He said, and I quote, "It is heartbreaking that Anthony Sami, John Rose, Peter and Kumar, who were Tamils residing in villages in the Hunsur Taluk of Chamarajnagar district in Karnataka, were shot dead by the Karnataka Forest Department officials in the early hours of August 15, 2026 in the Kaveri Wildlife Sanctuary area. I strongly condemn this massacre. The explanation given by the Karnataka Forest Department regarding this incident is indeed unacceptable. An honest investigation must be conducted in connection with this brutal incident. A high-level investigation committee should be formed and appropriate punishment should be meted out to those responsible." Now, this is just an excerpt of what he said. Meanwhile, Apoorva joins me on the broadcast with more details on this. Apoorva, you know, earlier we were talking about how there is now Stalin and the DMK raising questions about why the chief minister hasn't yet spoken about the killings. We do see now he has. He's condemned the action as well as come out to say that the Karnataka government must provide all necessary assistance to the families, as well as an investigation should be thoroughly provided.
1: Well, that's right, Shreya. In fact, if you do see, just a short while back, we saw the former Tamil Nadu Chief Minister and DMK Chief M.K. Stalin going ahead and questioning the inhumane killings of the Tamils there as well. And right now, you see the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, who has gone ahead and also condemned this killing that had taken place. In fact, it's not just the way in which these three Tamils were killed, but also the Chief Minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK, Congress government in Karnataka has handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu has also gone ahead and stated and reiterated that a high level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
0: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted, with the National Testing Agency having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA's another controversy is that they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and re-examination will take place in the month of September. And that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening. as well, and we will be also seeing that politics is creeping on the city's chair.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism चिदंबरम साहब Home Minister थे. सबसे ज्यादा अगर फायदा तो इनके as a Home Minister वो फायदा है, और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier Urban Naxal jibe.
6: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
7: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
4: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror, the ramwalk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
0: A political row has erupted over the national song Bande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Bande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song.
0: Not
4: Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
8: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
9: अरे क्षमा चाहिए नहीं भूल हो स्वीकार करो मैं ये आशा करो ये हाई अप्रीजमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल ममता बनर्जी ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
4: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
10: Sonia Gandhi ने जो हरकत की है, वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं।
4: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Bande Mataram to stop.
11: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
12: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
13: Mere pyare deshvasiyon,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
13: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
0: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में आप उसको कैसे देखते हैं
14: एक्चुअली देखिए सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया सोनिया जी ने वही किया हम इसका जो क्या बोले उसको हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है एकदम घृणोने आदमी है ये वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया पूरा देश का अपमान किया देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोचिए कि वो राष्ट्र राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध विरोध है, वो जातीयवाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
0: तो कांग्रेस का ये कहना था कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है, क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्रगीत के बीच में तो ठीक है जाने दे सकते हैं, क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
14: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं, सोनिया जी जब मुंह घुमा के दादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो मैनेज कर लो, उसके बगले में तो राजीव आपका
0: राहुल गांधी
14: भी कह रहे थे। जब वंदे मातरम हो रहा था ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या क्या हो रहा है? अरे भाई तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
0: जी।
14: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
0: कल,
14: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
0: आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग, क्या आप इस चीज को मानते हैं?
14: देखिए सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने का कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा, इंडिया का दो बंदा उसको प्रोटेस्ट किए थे, एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा, टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है। दोस्तों एकदम जो जिसका दोस्त है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब, एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है, वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमी मा शक्ति हृदय तुमी मा भक्ति, ये जो बात है ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। देखिए आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
0: जी,
14: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
0: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
14: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
0: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए, उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है, आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत हैं कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे, एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं तो उसको एपोलॉजी का क्या बात है, उसका अपोलॉजी तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है तो गलती।
0: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
14: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
0: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: 100% काय को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया, वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। कुछ कर पाए ना पाए इसमें सहमत नहीं है।
0: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
14: हमरा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूं, अगर अपोलॉजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा, वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलॉजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलॉजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
0: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स, ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has hit out at the government yet again over the Jantar Mantar protests. Rahul has praised the courage of India's youth, saying young protesters stood firm while demanding accountability from the Prime Minister. Rahul also said that the youngsters raised their voices through peace, love and humour. In a social media post accompanying a video of his interaction with the students, Rahul lauded girls who participated in the protests, alleging that they faced misconduct, verbal abuse and violence and were forced to apologize to the Prime Minister. He's also announced that the next edition of Chhatro Ki Goonj, scheduled in Pune on August 22nd, will focus exclusively on girls and give young women a platform to speak.
15: Three girls have been forced to do maafi.
16: Yeah.
15: And then the Prime Minister has accepted this maafi. Aap log protest kar rahe ho. Aapko dhamka kar maafi karwa rahe hain. And then PM is saying thank you for the maafi. Who is he to be thanking for the maafi? This apology is being given to you and then you're accepting the apology.
0: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Riya Kundu. Stay tuned.
17: You are watching India Today.

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सिटिंग प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, व्हाइल इट वाज बीइंग संग, दे वर नॉट अटेंटिव, रादर देन दे वर कैजुअली टॉकिंग टू ईच अदर, गिविंग रिमार्क्स टू ईच अदर, इवन कॉलिंग समवन, दिस शोज द अटर डिसरिस्पेक्ट बाई कांग्रेस पार्टी towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram.
2: आज के सरकार ने कोई right to किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है, और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
1: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है, और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
2: It shows the depth to which RSS and BJP leaders are willing to degenerate. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationalists.
0: India has signalled a big win in its bid to eradicate the Red Terror, the ramwalk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
3: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
0: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
4: 80 saal ke baad Bankim Babu ka ye amar mantra amar gaan jab phir se सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
5: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করব এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স है जो 15 साल মমতা ব্যানার্জি ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
0: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
6: Sonia Gandhi ne jo harkat ki hai, wo bahut sharmnak hai. Ye desh ke liye apaman hai. Ye pura Bharat ke liye apaman hai. Bengali jati ka apaman hai. Aur mera parivar ko to baat chhodiye. Hum log to bahut hi byathit hue hain.
0: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief, but later admitted that Sonia wanted Vande Mataram to stop.
7: Pura version gaya gaya kyunki sansad mein is par charcha hui. Yahan koi rokne ka prayas nahi tha kyunki lambe samay se Congress adhyaksh khade hue the. Sonia ji keh rahi thi unke liye kursi laake rakh do.
8: Ye BJP wale keh rahe hain ki apmaan hum logon ne kiya hai Vande Mataram ka, to aap bata dijiye कि वो बंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया।
0: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
9: मेरे प्यारे देशवासियों,
0: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
9: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है?
0: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
3: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
10: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया, ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया, सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है, एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
3: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में, तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
10: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के इधर-उधर देख रहे थे, वो शायद बगल में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगल में तो राजीव आपका
3: राहुल गांधी
10: भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था। उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम का यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
3: जी।
10: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
3: कल।
10: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
3: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी
10: 100%
3: कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने क्योंकि नेहरू की बात की तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
10: देखिए सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत एनालिसिस है। ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए थे किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन ने खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमी मा शक्ति हृदय तुमी मा भक्ति, ये जो बात है ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
3: जी।
10: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
3: मिस्टर चट्टोपाध्याय आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
10: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
3: जी, आपका बड़ा भाई जो है उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
10: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसके अपोल तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है गलती।
3: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए। आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
10: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
3: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
10: 100% काय को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। हम कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है।
3: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
10: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूं, अगर एपोलॉजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया एपोलॉजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यह, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
3: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स। ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has, the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has hit out at the government yet again over the Jantar Mantar protests. Rahul has praised the courage of India's youth, saying young protesters stood firm while demanding accountability from the Prime Minister. Rahul also said that the youngsters raised their voices through peace, love and humour. In a social media post accompanying a video of his interaction with the students, Rahul lauded girls who participated in the protests, alleging that they faced misconduct, verbal abuse and violence and were forced to apologise to the Prime Minister. He's also announced that the next edition of Chhatro Ki Goonj, scheduled in Pune on August 22nd, will focus exclusively on girls and give young women a platform to speak.
11: Three girls have been forced to do maafi.
12: Yeah.
11: And then the Prime Minister has accepted this maafi. Aap log protest kar rahe ho. Aapko dhamka kar maafi karwa rahe hain. And then PM is saying thank you for the maafi. Who is he to be thanking for the maafi? This apology is being given to you and then you're accepting the apology.
3: Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
13: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
3: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Priya Kundu. Stay tuned.
14: You are watching India Today.

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही, प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दंभ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी, प्रजातंत्र है इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है, हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है, आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: And now let's shift focus to the Jharkhand Student Stir, which has entered 24th day today. And the Devendra Mahato, the fasting student leader, the fast has entered the 15th day now. He has been fasting for 15 days now. And he's critical after the hunger strike, which is now in its 15th day. Mahato says that the situation is delicate and at the final stage. And the government has now invited for talks today. So the government will be meeting the student delegation today. Mahato hopes for positive outcome of the talks and is also seeking permanent reforms in education system. No student should have to fight like this. This is what the student leader is saying. In fact, Devendranath Mahato is also seeking reforms to... reforms for the future generation, and students are seeking CBI probe and exam cancellation. Those are the key demands of the student protesters, which has not yet been accepted by the Soren government. The students march and burn effigies of Rahul Gandhi and Chief Minister Soren yesterday, and now Mahato hopes that the talks will end his 15-day fast. So the government will be meeting the student delegation today, and now, Devendranath Mahato, who has been fasting for 15 days, he's hoping that the talks will end and the government will accept the demands of the student protesters.
1: Bolan, Sadar Hospital ke bistar se hi lade raha hoon aur mera anishchitkalin bhook hartal ka aaj 15th din hai aur satyagraha ka 23rd din. इस बीच में बहुत कुछ बीता जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं. आज दिन भर का स्थिति मेरा तबीयत बहुत सीरियस रहा. मेरा बीपी काफी लो हो चुका है और अब इससे पहले जब लो होता था और जिस दवाई से कंट्रोल होता था, अब उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है.
0: Colleague Satyajit is now joining us with more details on this. Satyajit, has the government now changed its strategy before meeting the student delegation for one more time today? What can be expected?
2: We can expect that something is going to come out. They are going to sort out some amicable solution. They have invited the protesters, a delegation from the protesting students, with legal advisor, because they want to discuss all the nitty-gritty and nuances of the issue, how they can move forward, how this issue can be sorted out, because there is technical legitimacy also. The matter is pending in court, Supreme Court, on the directions of Supreme Court. Recruitment order was given to the candidates who had succeeded in JSSC CGL examination. So many things are there. They will try to work out some formula. They will discuss all the modalities, how this issue can be addressed. And then it is expected that this may be called off. The agitation could be called off by the students. This is what is expected. And if the demands are not considered, if the students are not satisfied, they have already called for a CM Awas Gherao on 20th of August. They have put an ultimatum till August 18th. So it is expected that something serious will come out. And the government is also serious to address this issue.
0: All right, Satyajit, thank you for those details. We'll keep coming back to you for more updates on the story. So the government is all set to meet the student delegation once more today. And it remains to be seen if there is a breakthrough after the talks are held. So it's been 24 days of the Jharkhand students' protest. The students protesting against exam irregularities in Jharkhand have stepped up their agitation against the government after protesters issued an ultimatum to the government to meet their demands of the cancellation of all exams and a CBI probe by August 18th. The Jharkhand government has offered to hold a fresh round of talks today. Student leaders have said that they are ready for dialogue but remain unsure whether the government is serious about resolving their concerns. Students have warned that they will intensify the movement Gherao Chief Minister Hemant Soren's residence on August 20th if their demands are not met. On Sunday, protesting students burned effigies of Chief Minister Hemant Soren as well as Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi and RJD leader Tejaswi Yadav, saying that the alliance has failed to take concrete action on their demands.
1: छात्रों का आंदोलन सदर अस्पताल के बिस्तर से ही लड़ रहा हूं और मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 15वें दिन है और सत्याग्रह का 23वें दिन। इस बीच में बहुत कुछ बीता जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता। आज दिन भर का स्थिति, मेरा तबीयत बहुत सीरियस रहा। मेरा बीपी काफी लो हो चुका है और अब इससे पहले जब लो होता था और जिस दवाई से कंट्रोल होता था, अब उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है।
3: माननीय राज्य सरकार ने एक वार्ता का प्रस्ताव दिया है कि कल 2 बजे वार्ता होगी, अगर इसमें छात्र जो अपने डेलीगेशन में 2-3 विधिक सलाहकारों को भी शामिल कर सकते हैं, और मेरी भी यही अपील है छात्रों से कि वो इस वार्ता का पत्र एक्सेप्ट करें और वार्ता कर
4: सकते हैं। तो मतलब दो प्रमुख मांगों पे आप डिटेल
3: करेंगे, ये तो छात्रों के
5: लिए। हम छात्रों से अनुरोध करने आए हैं कि उस वार्ता में छात्र अपने और अपने विधिक सलाहकार के साथ पहुंचे 2 बजे उसी स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता हो।
6: इनके साथ कौन शामिल होगा?
5: सरकार की तरफ से वही जो पूर्व में सभी मंत्री जी लोग,
7: चार जो समूह थे लोग, वो चारों के चारों
5: मंत्री जी लोग रहेंगे।
7: और सीएम से क्या मुलाकात, क्योंकि लगातार छात्र
5: अभी तो हम लोग होगा, उसके बाद वहाँ पर ये लोग डिसीजन।
8: सर एक जो बात
5: वार्ता की, हम लोग
8: छात्रों की जो मांग थी कि मुख्यमंत्री से अब वार्ता होगी, मंत्रियों के समूह के साथ वार्ता,
5: हम लोग वार्ता होगी कल वही स्टेट गेस्ट हाउस में, फिर ये लोग
7: तो अभी आप इनवाइट करने आए,
5: इनवाइट करने आए।
9: 18 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी मांग को पूरा कीजिए, जेएसएस से जल्द रद्द कीजिए, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा लिए गए तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए सभी में सीबीआई जांच कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, झारखंड के लाखों छात्र नौजवान 20 तारीख को सीएम आवास का घेरावा करेंगे।
10: बिल्कुल, कल पुतला दहन करेंगे हम लोग। अगर जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी 11-13 रद्द नहीं की जाती, उनमें सीबीआई जांच नहीं कराई जाती, तो कल से 2400 जिलों के मुख्यालय में पुतला दहन करेंगे और रांची में भी करेंगे। न सिर्फ हेमंत सोरेन का करेंगे बल्कि राहुल गांधी का भी करेंगे। और 20 तारीख डेट याद रखिए, 20 तारीख, 10 तारीख को विधानसभा घेराव झांकी थी, 20 तारीख अभी बाकी है।
11: मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रात से बिगड़ चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं और पैर हाथ भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन जिंदा रहूँगी, मुझे नहीं पता कि मैं इस जंग को और कितने दिन तक झेल पाऊंगी, आखिर और कितने दिन लगेंगे इस जंग को जीतने में, पता नहीं। सारे अभ्यर्थियों से अपील है कि प्लीज आप हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सब आइए।
0: And some more news coming in. Tech glitches in Bombay High Court clerk recruitment examination. In Maharashtra, students protest in Chhatrapati Sambhaji Nagar, and CJP founder Abhijit Dipke also meets the protesting students. Dipke says that students demanding re-examination and the students marked fail due to server issues and the reports of computers not functional have also emerged. So online examination for the High Court in Maharashtra has created complete chaos. Students have been marked, several students have been marked as failed due to server issues. At majority of the centers across the state, the computers were not even functional.
12: Students ne mujhe bataya ki inki subah High Court ki exam thi, और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे हैं तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए। और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?
0: And my colleague Mustafa Sheikh is now joining us with more details on this. Mustafa, tell us more about the irregularities that had emerged in the clerk High Court recruitment examination, after which the students are now staging protests.
13: Well, yes, the glitch had appeared in this examination, and Abhijit Ditke had visited one of the centers, and he stood there and he had surveyed and spoken to many of the students who were participating in this examination, after which he claimed that the authority has not done enough to get

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सिटिंग प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वाइल इट वॉज बींग संग दे वर नॉट अटेंटिव, रादर देन दे वर कैजुअली टॉकिंग टू ईच अदर, गिविंग रिमार्क्स टू ईच अदर, इवन कॉलिंग समवन, दिस शोज द अटर डिसरिस्पेक्ट बाय कांग्रेस पार्टी towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram.
2: Aaj ke sarkar ne koi right to kisi ko hak nahi diya, khane ka hak humne diya, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की, लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस की किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: what Vijay said in the house, an unethical statement. Everybody knows that Stalin had lost. And many people have lost. Even Vijay's party members, Vijay's party did not get a majority. The people of Tamil Nadu did not give an absolute majority to Vijay. Many people had lost. It is a third-rated attempt, or what I can say is comment, by Vijay that he is searching for the father. That's a third-rated comment. So when you make a third-rated comment, you will get a response like this only.
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था. चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकना गान रोकने का कहा. हम सब टीवी पर देखते रह गए. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

0: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this, and she, now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable, and Bharatiya Janata Party condemns it.
1: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. Chalu gaan mein Congress ki netri Sonia ji ne Congress adhyaksh ko rokna gaan rokne ka kaha. Hum sab TV par dekhte rahe gaye. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका

0: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है, ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को, देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं।
1: তার পরিবার গতকাল রাতেই রিয়্যাক্ট করেছেন, মেল করে মাননীয় সোনিয়া গান্ধীকে, মাননীয় মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানিয়েছেন। তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা কর। এই হাই অ্যাপ্রিচমেন্ট কা পলিটিক্স হে, যে 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হ্যায়, ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হ্যায়। এক খাস ভোট ব্যাঙ্ক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হ্যায়।
2: A cancer treatment that uses sound waves instead of a scalpel. That is the idea behind Focal HIFU, a technology designed to precisely target prostate cancer cells while sparing as much healthy prostate tissue as possible. For years, men with localized prostate cancer have largely faced three options: surgery, radiation, or active surveillance. Researchers are now studying whether a targeted approach could offer another choice for carefully selected patients. A 10-year analysis involving 3,477 patients has reported encouraging outcomes. The study found that prostate cancer's specific mortality was extremely low. Most patients remained free from cancer spread to other organs after a decade of follow-up. Researchers suggested that for appropriately selected men with localized prostate cancer, focal HIFU could be considered alongside established treatments such as surgery and radiation. The biggest potential advantage of focal therapy is the concept of organ preservation. Instead of removing the entire prostate, doctors aim to destroy the cancer-containing area, potentially reducing side effects related to urinary control and sexual function. Several leading cancer centers in India are already developing experience with HIFU for selected prostate cancer patients. Experts say the next step is generating more Indian outcome data, ensuring patients understand that all available treatment choices are there. What should you know then? The future really of prostate cancer care may not be about one treatment replacing another, but about offering patients more precise and more personalized cancer care. Focused ultrasound represents a move towards targeted organ-preserving cancer care. Doctors say careful selection and continued research will determine its wider role in India.
3: CP Plus, ऊपर वाला सब देख रहा है।

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है।

0: आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें उसका। इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। आज पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
1: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
2: वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। तो वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
3: यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।
0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जो करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this, and she, now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable, and Bharatiya Janata Party condemns it.
1: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. Chalu gaan mein Congress ki netri Sonia ji ne Congress adhyaksh ko rokna gaan rokne ka kaha. Hum sab TV par dekhte reh gaye. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
2: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है. ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए. हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से. और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं. मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को. देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं.
3: तार परिवार गत काल रात ही रिएक्ट करे से मेल करे माननीय सोनिया गांधी के, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के जानिए छे ना. তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করি. এই হাই অ্যাপ্রিচমেন্ট কা পলিটিক্স হ্যায় জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হ্যায় ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হ্যায়. এক খাস ভোট ব্যাংক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হ্যায়.

0: And news just coming in this morning, Rahul Gandhi slams NTA over UGC NET re-exam. Gandhi says, Modi ji, look what your NTA did. NTA, a student paid the price, says the leader of the opposition in Lok Sabha. Three UGC NET papers have been cancelled, citing faulty questions and flaws. NTA UGC NET with a re-exam was ordered for sociology, English and commerce. Gandhi says not education but extraction machine. Make NTA accountable, says Rahul Gandhi. Pradhan's ouster is the first step and not last, is what the opposition leader is now saying. Clearly, we've seen the NTA under a fair amount of scanner over the last few days. I'm going to go across to Rahul for more on that story. Here, the opposition leader in Lok Sabha, Rahul Gandhi, clearly says that this is something that demands further action, full accountability. Just the education minister stepping down clearly isn't good enough. Rahul.
1: Well, Sneha, it seems that Rahul Gandhi is again incruing his guns on Modi government as far as NTA is concerned, because, after this news broke out that NTA has cancelled three exams that were conducted between 22nd June to 30th June of UGC NET, Rahul Gandhi has gone hammer and tong as far as Modi government is concerned. He is accusing Modi government of creating a system which is actually punishing and penalizing students who are undertaking these examinations. In fact, he said and added that the resignation of Dharmendra Pradhan was just one step, and his motive or intention is to correct the entire education system. Obviously, in a way, he has got an apt opportunity to attack again Modi government, because we have seen earlier also very aggressive Rahul Gandhi on the issue of a NEET, wherein he was repeatedly and frequently addressing press conferences, doing dharnas and protest marches. And again, as we speak, the student body of Congress Party is protesting at this point of time in Delhi University on the same issue. So it seems that Congress seems to believe that they have again gotten an opportunity to attack government. And in that same context, you'll be seeing now Rahul Gandhi has tweeted, expect that entire party and opposition would be coming together to exert more pressure on NTA, and would obviously try to paint it as a failed mechanism, which they believe is actually punishing students. And even though this is happening, Modi government is keeping a blind eye.
0: I'm going to leave it at that for the moment. Rahul Gautam getting in more details, expecting further confrontation between the government and the opposition on this issue, given that the leader of the opposition has raised it, targeting his guns firmly on the Prime Minister. NTA, like I said, is under scrutiny once again over irregularities. The testing agency has said that complaints about errors were received affecting the English, commerce and sociology exams. A committee was formed to probe the errors, with re-exams to be conducted based on the committee's recommendations. The re-exams will be done on the 9th and 10th of September. In the English paper, 67 of 150 questions are repeated from the 2024 paper, with the same answer options. In the sociology exam, there were spelling and grammatical errors, incorrect names of scholars and concepts, poor Hindi translations and unclear and out-of-syllabus questions. In the commerce exam also, there were discrepancies. For example, more than 80 questions were repeated from previous years, along with factual and typo errors. The opposition has come down heavily on the government over this matter. Congress MP Pawan Kheda has said, let's hope that, unlike the Chanda Chori scandal involving the Ram Mandir, low-level functionaries are not once again targeted or thrown under the bus to shield those at the top from political accountability. That's what the Congress has said.
2: Fresh glitches have now been reported as far as the UGC NET examination is concerned. There were repetition of questions from previous years. There were misspellings. There were translation issues, due to which a retest has now been ordered. How do you see this fresh controversy?
3: See, the NTA is not a statutory body. It is only a society. It has only 39 sanctioned positions, out of which only 24 are filled. NTA outsources all its activities. The NTA has zero capacity to run this, to run a nationwide examination process. And secondly, the person who's heading the NTA was moved from the AI conference fiasco as a punishment to the NTA. So the government really needs, if any reform needs to happen, the reform has to happen with NTA. First of all, it has to become a statutory body. You must manage with competent people, give it the authority and the resources. It can't be outsourcing things. Everything in the NTA is outsourced to a company called Innovative View.
0: Right. Now, CJP founder Abhijit Dibke has slammed the government over this entire issue. Let's take a listen.
4: स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे हैं तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया, कोई बीड से आया, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे?
0: And more news coming in. Well, Jharkhand Congress has warned protesting students. Jharkhand Congress Neta has warned against the stubbornness which they say is being displayed by students right here. Jharkhand Congress says, Zid se baat nahi banti. That's what he said. Now, the government is set for talks with protesting students is what we're learning. Congress is telling the students, drop your Zid, basically. Stop being stubborn. Congress leader Rajesh Thakur is back. The need for dialogue at this hour. The students have been demanding, saying that whatever they say, this issue should be resolved. 24th day of star dialogue or deadlock is a big question mark here.
5: हमने शुरू से ये प्रयास किया है कि जो छात्र चाहते हैं उनका समाधान निकले और समाधान के लिए हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिर से जहां तक की बात है तो फिर से की बात नहीं है, ये लगातार हम कर रहे थे। उसी कड़ी में एक बैठक आज हम लोग ने फिर रखी है। दोनों लोग अपनी अपनी जिद छोड़ करके एक सामान्य तरीके से समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएगी और दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार होगा। जिद से बात नहीं बनती है।
0: All right, I'm going to go straight across to now Rajesh Thakur for his perspective on the kind of protest that we've seen. Rajesh Thakur ji, puchna chahungi aapse ki ye dharna ko is samay 24 din ho gaye. Kya chahte hain aap students se jo bahut dino se sarkar se keh rahe humse baat cheet kariye aur solution nikale is problem ka? Aap kehte hain dialogue hona chahiye, zid chhod deni chahiye. Kya aap ye keh rahe ki chhatro ko apne ghar is samay chale jana chahiye, protest karna chhod dena chahiye?
6: नहीं नहीं, हम इस बात को कहते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि इस आंदोलन को लंबे तक चलना है।
0: अच्छा,
6: उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, अनशन पर बैठे हैं तो उन लोगों को अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, क्योंकि बहुत बड़े सिस्टम सुधार की बात है। यहाँ 25 सालों से बिगड़ा हुआ एक सिस्टम है जिसमें कई बार कई तरह की बातें सामने आई है और कई तरह की जांच चल रही है। सीबीआई पिछले 20-22 वर्षों से जांच कर रही है, बावजूद उसका नतीजा सिफर है। तो ऐसे में छात्रों को सरकार की बात को सुनते हुए, चूंकि पहले सीबीआई ने कुछ नहीं किया है और सीआईडी जो अभी वर्तमान में काम कर रही है उस पर संतोष जाहिर करते हुए और निगरानी बनाए रखते हुए, छात्र हमेशा निगाहवानी करते रहे और कैसे सीआईडी जांच कर रही है उस पर ध्यान रखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो दिन में सब कुछ हो जाएगा।
0: आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा रखें। यहाँ पर क्लियरली देखा जा रहा है कि भरोसा ही तो नहीं है। राजेश ठाकुर जी, भरोसा ही तो नहीं है।
6: नहीं नहीं, बच्चों का भरोसा तो करना ही पड़ेगा। जिससे आप डिमांड करते हैं उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं होता तो फिर डिमांड क्यों कर रहे हैं? डिमांड इस वास्ते कर रहे हैं कि उनको भरोसा है कि हमारी मुख्य बातें जो है मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, और इसलिए लगातार डायलॉग्स जब भी हो रहे हैं तो छात्र उसमें उपस्थित होते हैं, बातचीत करते हैं। आज भी डायलॉग है उसमें भी आज छात्र उपस्थित होंगे और बातचीत करेंगे, तो भरोसा है तभी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे जो स्वतंत्रता दिवस का उनका उद्बोधन था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की पीड़ा को समझते हैं, छात्रों को की जो भी समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। भरोसा तो करना होगा और हम लोग लगातार छात्रों से भी अपील कर रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं।
0: तो बात कहां पर फंस रही है? अगर आप कहते हैं भरोसा करना पड़ेगा और सरकार सुन रही है इनकी बातें, आप तो मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, उनके आश्वासन पर भरोसा करना चाहिए, तो बात इस समय फंस कहां रही है क्योंकि 25 दिन से बच्चे बैठे हैं?
6: हाँ, नहीं, यही तो है कि कुछ बातें सरकार को समझनी होगी, कुछ बातें बच्चों को भी समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि जिद किसी के एजेंडे पे काम करना होगा, चूंकि आंदोलनरत छात्र हैं, कई तरह के लोग वहां जाते हैं और कई तरह की बात करते हैं। जब सीआईडी एक जांच कर रही है और उसमें कोई फलाफल अभी नहीं निकला है तो जरूर एक कोई टाइम पीरियड ले वो सरकार से कि भाई देखिए हमको 90 दिन के अंदर में चाहिए ये रिजल्ट, तो एक बात समझ में आती है। जब तक इस तरह की जिद पर सरकार को भी अगर कोई कंसिडरेशन है उसको थोड़ा आगे बढ़ते हुए करना चाहिए।
0: तो सीबीआई प्रोब का जो ये जो इस समय जो एक मुख्य एक डिमांड है, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो बच्चे चाहते हैं, इसको लेकर सरकार राजी नहीं है, तो आपको लगता है कि सरकार को भी इस समय इस पर सोचना चाहिए कि शायद ये डिमांड अगर पूरी करे तो बच्चे शायद अपने घर चले जाएं?
6: नहीं नहीं, देखिए केंद्र सरकार ने अभी जो पूरा आंदोलन चला छात्रों का नीट को लेकर के, क्या हुआ नीट की परीक्षा का जो ये था उसमें उन्होंने जांच की बात कही।
0: जी जी राजेश ठाकुर, इनफैक्ट आई एम गुड टू थैंक यू फॉर द मोमेंट, वी रियली इनफैक्ट नीड टू मूव ऑन क्विकली टू अनदर स्टोरी दैट्स ब्रेकिंग एट दिस। आवर व्यूअर्स हैज गॉट टू डू विद द कंट्रोवर्सी अराउंड the statements that were made by Prime Minister Modi during the course of his speech at Red Fort on Independence Day. Here the BJP is addressing a press conference.
7: कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के शासनकाल में पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे, दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई, ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5,000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए, 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए, 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के द्वारा, पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा, मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावी जिले शून्य पर आ गए हैं, मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थी, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोल कर देखिए और कान खोल कर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था और आज गृहमंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। ये सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों का को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का यानी ट्राइबल जेंजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था और वो अच्छा लगता था। ये है दिमाग की नक्सल जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुलना उस क्षेत्र में, 1200 से अधिक एटीएम खुलना, 6000 से अधिक मोबाइल के टावर लगना ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो विकसित हो जाएं, 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध हो जाना ताकि वह युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके, यह दृश्य जिसको खराब लगता है वो वास्तविकता में दिमागी नक्सल है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चिदंबरम साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिसने वित्त मंत्री के रूप में कहा था कि भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और सदन के पटल पे बोला था, और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है। जिसकी सोच ऐसी है वो है दिमाग की नक्सल। और मैं यह भी कहना चाहता हूं वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमाग की नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में डिस्कशन से नहीं रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमाग की नक्सल। और ये यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो कालखंड जब इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं और आज एक सकारात्मक वातावरण बना है ट्राइबल एरियाज में, वह जिसको सही नजर नहीं आ रहा है वो वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक दौर में जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे वो तो अपनी जगह की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था, वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं, जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं, यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है, और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है, जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा जिन्होंने 1,00,000 से अधिक वृक्ष लगाए, एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है, और याद करिए वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में, मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे। जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीति है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था और आज नागपंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है यह बहुत सहज और स्वाभाविक है, इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। ये है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है, स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है।
8: मित्रों, इस विषय से जुड़े सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे,
0: It's a big difference that has been made by the Bharatiya Janata Party, reiterated previously by Kiran Rijiju, the Parliamentary Affairs Minister as well. And now you have the Bharatiya Janata Party raising this issue once again. Viewers, this came after a statement was made by, former Union Minister and Senior Leader of the Congress Party, P. Chidambaram, when he said that I am Dimagi Naksal. This in reference to what the Prime Minister had said during during the Independence Day speech, this was in response essentially to that. Here, the Bharatiya Janata Party is clarifying on who really is a Dimagi Naksal. Now, the BJP has been saying that this was a comment that was not directed at opposition leaders specifically, and to imagine so is faulty, is what is being said by the Bharatiya Janata Party. This after P. Chidambaram had said he was proud to be a Dimagi Naksal, and Prime Minister Modi used the term in his Independence Day speech. Now, the BJP here is saying that this is not what was meant to be directed at opposition leaders. The people, in fact, who are misguided are the ones who they believe are Dimagi Naksals. For example, those who stand with separatists, support Article 370, support Maoists, reject the Indian Constitution are Dimagi Naksals. This is what has been said by the Bharatiya Janata Party. Those, in fact, who want to cut chicken neck to separate Northeast from India are the people who the BJP and the party and the Prime Minister believes are Dimagi Naxals. This after P. Chidambaram said that he is a Dimagi Naxal in reference to what Prime Minister Modi has said during his Independence Day speech, when P. Chidambaram had said that he is proud to be a Dimagi Naxal. Here the BJP has gone ahead and tried to say that this wasn't a jibe that was intended to any opposition leader against any opposition leader. Listen in to what the BJP has said. Sudhanshu Trivedi was speaking a while ago. Let's take a listen.
7: 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिपेक्ष में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं। यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि
0: And the political war with the Dimagi Naxal remark is only escalating, as we have seen with former Home Minister P. Chidambaram openly embracing the label a day after Prime Minister Narendra Modi's Independence Day address. Well, Chidambaram has accused the BJP of recycling, it says, its old political labels, calling Dimagi Naxal a new version of terms like Urban Naxal and Andolan Jeevi used against the opposition. Congress, sitting back at the BJP over the Dimagi Naxal label, alleged that those opposed to the party are branded as Naxals. The party asked whether challenging the BJP or demanding social justice is now being enough to be called a Dimagi Naxal. While Union Minister Kiran Rijiju has clarified the Prime Minister's stance, he said the Prime Minister did not target the opposition but a specific set of people.
9: Presented by G Square Housing, India's largest plotted developer.
10: Co-presented by
11: Ek Hint To Dete, Hint Bade Aaram Se.
12: Jewelry partner GRT Jewelers, Wedding and Celebration Collection.
13: Powered by Chori Wala Status Nahi, Crafto Wala Status.
14: Appliance partner Vasant & Co.
15: Special partner National Stock Exchange.
16: Who is raising his voice on several of these issues that are hot button issues at the moment in Tamil Nadu. He was one of the youngest ministers in the Manmohan Singh government, seems a very long time ago now, in 2004. But he is the leader of the PMK, one of the more important regional parties of the state of Tamil Nadu. Please give a warm round of applause to Rajya Sabha MP and PMK leader, Dr. Ambumani Ramadas.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें उसका। इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। अब पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
1: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
2: वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। क्योंकि वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
3: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।
0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। सर,

0: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this, and she, now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable, and Bharatiya Janata Party condemns it.
1: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. Chalu gaan mein Congress ki netri Sonia ji ne Congress adhyaksh ko rokna gaan rokne ka kaha. Hum sab TV par dekhte rahe gaye. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें उसका। इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।

धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
1: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
2: वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। तो वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
3: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।

0: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this, and she now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable, and Bharatiya Janata Party condemns it.
1: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. Chalu gaan mein Congress ki netri Sonia ji ne Congress adhyaksh ko rokna gaan rokne ka kaha. Hum sab TV par dekhte rahe gaye. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
2: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है. ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए. हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से. और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं. मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को. देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं.
3: तार परिवार गतकाल रात ही रिएक्ट करे सर, मेल करे माननीय सोनिया गांधी के, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के जानिए सर. তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করব. এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স হে জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হে ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হে. এক খাস ভোট ব্যাংক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হে.

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें उसका। इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही, प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?
1: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this and she, now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable and Bharatiya Janata Party condemns it.
2: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. Chalu gaan mein Congress ki netri Sonia ji ne Congress adhyaksh ko rokna gaan rokne ka kaha. Hum sab TV par dekhte rahe gaye. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

0: presented by G Square Housing, India's largest plotted developer.
1: Co-presented by
2: एक हिंट तो देते हिंट बड़े आराम से
3: ज्वेलरी पार्टनर GRT Jewelers वेडिंग एंड सेलिब्रेशन कलेक्शन
4: पावर्ड बाय चोरी वाला स्टेटस नहीं क्राफ्ट वाला स्टेटस
5: अप्लायंस पार्टनर वसंत एंड को
6: स्पेशल पार्टनर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही, प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है, हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है, आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: presented by G Square Housing, India's largest plotted developer.
1: Co-presented by
2: एक हिंट तो देते हिंट बड़े आराम से
3: ज्वेलरी पार्टनर GRT Jewelers वेडिंग एंड सेलिब्रेशन कलेक्शन
4: पावर्ड बाय चोरी वाला स्टेटस नहीं क्राफ्ट वाला स्टेटस
5: अप्लायंस पार्टनर वसंत एंड को
6: स्पेशल पार्टनर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
7: Your hands together to welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. C. Joseph Vijay. Louder, please. We can do better than that. Please welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, who's taken time out of his schedule to join us here at the India Today Roundtable.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: दिस इंडिपेंडेंस डे इंडिया टुडे मैगजीन ब्रिंग्स यू द शी लिस्ट 50 अंडर 50 फ्रॉम बिजनेस एंड साइंस टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस सिनेमा टेक्नोलॉजी कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट मीट द वुमेन अचीवर्स innovators and change makers redefining the next chapter of India. Read the full special in the latest issue of India Today, Making Sense of India, now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe at subscriptions.intoday.in.

0: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं, पहले भी नहीं गाया अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
1: This is nothing but attention diversion tactics. And if they are so keen to file cases, first they should also file against Ms. Swaraj, right? Ms. Basuri Swaraj. She walked out, apparently that's what the social media video show that. Why there is no cases filed against them by the BJP or Morcha? And whether it's BJP or Morcha, ABVP, or whether it is RSS, we don't need certificates of being national or anti-national from them. These are the same people who have not done anything for the freedom struggle. Their political mentors didn't even hoist the flag for 52 years.
2: सोनिया गांधी हो राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जेन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है। सोनिया गांधी जी ने जो व्यवहार किया वंदे मातरम को लेके, इससे एक बात तो पूरा दिखाई देते हैं कि अगर भारत में कभी गलती से कांग्रेस आया तो भारत का हालत क्या होने वाला है। इससे मैं कई ज्यादा परेशानी भी नहीं हूं, इसलिए ये लोग खुल्लम खुल्ला देश विरोधी काम कर ही रहा है और खुल्लम खुल्ला देश का लोगों को बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, धरना करो, एनआरसी लाओ, ये तो हर दिन बोल ही रहा है। और वंदे मातरम को रुकवाने के लिए उनका जो प्रयास हुए दोनों मां बेटा का, इससे यही दर्शाता है कि कांग्रेस देश का शासन में आने में अगर आते हैं गलती से, हमारा देश का क्या हालत होने वाला है।
3: जिसको संपूर्ण वंदे मातरम गाते समय जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
4: What Vijay said in the house, an unethical statement. Everybody knows that Stalin had lost. And many people have lost. Even Vijay's party members, Vijay's party did not get a majority. The people of Tamil Nadu did not give an absolute majority to Vijay. Many people had lost. It is a third-rated attempt. What I can say is comment by Vijay that he is searching for the father. That's a third-rated comment. So when you make a third-rated comment, you will get a response like this only.

0: आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, 2 जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था?
1: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं।
2: তার পরিবার গতকাল রাতেই রিয়্যাক্ট করেছেন মেল করে মাননীয় সোনিয়া গান্ধীকে, মাননীয় মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানিয়েছেন। তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করেন। এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স হে জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হ্যায় ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হ্যায়। এক খাস ভোট ব্যাঙ্ক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হ্যায়।

0: worker like me and bestow upon me the extraordinary responsibility of National General Secretary to contribute to the organization. This is a tribute to the Karyakarta system, serving the organization and contributing under the guidance of the country's illustrious Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the leadership of the esteemed National President, Shri Nitin Nabin ji, is for me a matter of loyalty and dedication, she writes. And then she goes on to say, the newly formed team of the resolute BJP, committed to realizing the spirit of nation first and the singing of glories of Mother India, Vande Mataram, is dedicated to serving as the foundation of actualizing the resolve of Vikasit Bharat. Heartfelt gratitude and congratulations to Prime Minister for his constant inspiration and companionship, and to the top leadership, including National President, as well as the party's elders, for the trust they've placed in me. Victory to Mother India. Okay, incidentally, in 2025, my colleague Anjana Om Kashyap had spoken exclusively to Smriti Irani about her political future back then. She had said that the 2024 setback at Amethi wasn't the end of politics, as politics is in her veins. Listen in.
1: सास भी कभी बहू थी मैं आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है तो मुझे लग रहा है कि इस पर एक सवाल हो ही जाना चाहिए कि क्यों लिया ये पैसा आपने इसकी वजह क्या है
2: बहुत ही बचकाना जवाब होगा मेरी मर्जी
1: हम उस मोड में आ गई है स्मृति ईरानी मेरी मर्जी
2: मेरी मैं हमेशा से ऐसी थी देखिए लोगों के पास जिंदगी में चॉइस नहीं होती मेरे पास है तो आप जिंदगी को सूक्ष्म रूप से जीने की मेरी फितरत नहीं है कि आप अगर जिंदगी को सिर्फ एक पहलू से जिए एक नजरिए से जिए तो वो क्या जीना हुआ
1: पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है
2: कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है
1: 49
2: पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता मैं तो तीन बार की सांसद रह चुकी पांच विभागों की मंत्री रह चुकी अभी तो लंबा
1: पर संसद में पहुंचने की हसरत तो फिर होगी और अमेठी
2: मुझे अमेठी नहीं लगता कि पार्टी कब कहां क्या करवट बदलेगी क्या दायित्व देगी ये मुझे नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि कम से कम संसद के माध्यम से मैंने अपनी काबिलियत को स्थापित किया आपको याद दिलाती हूँ मैंने राजनीति 10 वर्ष तब भी की जब यूपीए की सरकार थी बहुत सारे लोग मेरा फोटोग्राफ देखते हैं धरने उस पे मैंने 10 साल धरनों वाली राजनीति भी की है जेल की हवा भी काटी है तो लोगों ने मुझे अमेठी की आप बात करें मैंने तब भी अमेठी में काम किया जब अखिलेश की सरकार थी और मैंने अमेठी तब लड़ा जब यूपीए की सरकार थी मतलब वो कहते हैं ना मौत के कुएं में जाके सीधा छलांग मारना मैं वो सब कर चुकी हूँ
1: गाड़ी चला चुके हैं आप मौत के कुएं में
2: अच्छे से बाहर आ चुकी
1: हूँ तो 29 में बीजेपी कहती है भाई तू फिर अमेठी से लड़ो आप लड़ना चाहेंगी ना अमेठी से
2: बीजेपी क्या कहेगी 29 में या तो ना आप जानते ना मैं जानती हूँ बीजेपी 29 में क्यों कहेगी 26 में कुछ कह डाले तो
0: So it's Smriti Irani. It has actually always been Meri Marzi. Let's see what's the role that she gets in the days and months ahead. We'll be tracking that story very closely. I want to thank all my guests. That is all the time that we have for in this special broadcast. A quick break. India first and that big debate over several issues, including the controversy over Vande Mataram and Mansik Naxal. That's coming up on the other side of a quick break. Stay with us.

0: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। आज पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
1: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा. मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे. हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा. हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? पहलवीन का अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा.
5: दिस इज नथिंग बट अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स, एंड इफ दे आर सो कीन टू फाइल केसेस, फर्स्ट दे शुड आल्सो फाइल अगेंस्ट मिस स्वराज, राइट, मिस बासुरी स्वराज. शी वॉकड आउट अपेरेंटली, दैट्स व्हाट द social media video show that. Why there is no cases filed against them by the BJP or Morcha? And whether it's BJP or Morcha, ABVP, or whether it is RSS, we don't need certificates of being national or anti-national from them. These are the same people who have not done anything for the freedom struggle. Their political mentors didn't even hoist the flag for 52 years.
6: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया. और ये भारत का अपमान है, वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है. वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम.
7: यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है. यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है. यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है. और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा.

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सोनिया जी जैसी महान शख्सियत पर झूठे ओछे आरोप लगा रहे, उस पर घटिया स्तरहीन ये आरोप लगाना भाजपा की घटिया मानसिकता का परिचायक है। मेहरबानी करके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज को छोड़ के राजनीति करो।
4: आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसी भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम को मान्यता एक तरह से लाल किले से लगाकर पूरे देश में उसको अपनाया गया और वंदे मातरम पूरा अपनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस न इंदौर में पूरा वंदे मातरम जाती, न उनके नेता वहाँ दिल्ली में उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते। हमारे लिए वंदे मातरम आज़ादी के दीवानों के समय से आज भी अत्यंत श्रद्धा आस्था का केंद्र है। पूरा देश आंदोलित है कांग्रेस के व्यवहार कारण से। कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए
5: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है। ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्यां दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
6: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही, प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आज़ाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
7: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

करेंगे कि माफी मांगिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि सोनिया गांधी के मुकाबले में देशभक्त ना अमित शाह हैं ना नरेंद्र मोदी हैं। सोनिया गांधी ज्यादा बड़ी देशभक्त हैं बीजेपी के नेताओं के मुकाबले में, और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है।

वो वंशज उनके हो सकते हैं अपने दादा के, लेकिन वंदे मातरम के वो वंशज नहीं है। वंदे मातरम लिखा है, वंदे मातरम पूरे देश उसका इज्जत करता है, इससे किसी इंडिविजुअल आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो डिमांड

0: It's a big crackdown on Pakistan's notorious counterintelligence agency ISI's sleeper cells in India. Nationwide raids, arrests across 14 states. 200 people have already been taken into custody. The searches and raids continue. 500 plus mobile phones and devices under the scanner even as we speak. Union Home Minister Amit Shah, he's announced India has dismantled the Pak ISI back Shehzad Bhatti terror network ahead of Independence Day and foiled plans to carry out terror strikes in India. The Home Minister said more than 200 suspected operatives of this Shehzad Bhatti network have been taken into custody. These were coordinated operations and multi-state coordinated operations coordinated by the Ministry of Home Affairs. These were conducted across 14 states. The arrest, the crackdown was launched on the 12th of August. Agencies made major recoveries. So can you imagine the Home Ministry coordinating multiple state police forces, Central Armed Police Forces backing them? They carried out top secret searches and raids in various parts of the country. They've recovered improvised explosive devices. They've recovered grenades, and these grenades have markings of POF or Pakistan Ordnance Factory, pistols, live ammunition and equipment apparently used for espionage, including CCTV cameras with mobile phone chips. Now, these CCTV cameras were installed near certain VA and VPs, vital assets and vital points, including crucial railway lines and stations where military trains were carrying equipment or military convoys were passing. And they not only recorded, the CCTV cameras recorded the military movement, but also relayed those images real time across the border. India Today has learned that the probe agencies have now identified more than 500 suspicious mobile numbers and data cards linked to this investigation. More than 200 suspects have been taken into custody. They've been questioned across states. The investigation seems to indicate a social media-based recruitment pipeline. Indian youth were targeted, then radicalized and brought directly in contact with handlers in Pakistan. Sources say a certain Abid Jatt and Ajmal Gujjar were ISI-linked handlers who recruited youngsters online and then put them in touch with Shehzad Bhatti after initially radicalizing them. Shehzad Bhatti apparently did the rest. The recruits were then offered money for terror-related tasks. Once they carried out the task, they were then in the clutches of these ISI handlers. Because they said, if you don't continue to help us, we will give your information to the police and you and your families would be sorted out. So they carried out reconnaissance, they carried out weapons smuggling, and they were being prepared to carry out a series of joint coordinated terror attacks across the country. I want to quickly bring in India Today's Arvind Ojha. Arvind, 14 rajyon mein 200 se zyada giraftariyan, kitna bada tha ye network aur kya pura network ab dhwast kar diya gaya hai ya abhi bhi kaam jari hai?
1: देखिए अभी भी जो ऑपरेशंस है वो लगातार जारी है. 14 स्टेट में ये रेड्स हुई थी 12 अगस्त से 14 अगस्त तक. गौरव, हाल फिलहाल में जो शहजाद भट्टी आईएसआई मॉड्यूल है उसने कुछ टेरर एक्टिविटी को इंडिया में अंजाम दिया था. खासतौर से जलंधर में बीएसएफ के ऑफिस के बाहर आईडी ब्लास्ट और रांची में आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका गया था. उसके अलावा पंजाब में कुछ पुलिसकर्मियों की टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम लगाया गया था. जब ये सारे इंसिडेंट को कंपाइल किया गया उसके बाद फिर सेंट्रल एजेंसियों ने एक पैन इंडिया ऑपरेशन चलाया जिसमें 12 अगस्त से 14 अगस्त तक दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना इन स्टेट में ये रेड्स हुई है और उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया है. आईईडी समेत जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो रिकवर हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी लड़कों को रिक्रूट करता है. परेशानी की बात एजेंसी के लिए थी कि 20 से 25,000 में कोई भी लड़का वो पेट्रोल बम या आईडी ब्लास्ट करने को तैयार हो जा रहा था. इस वजह से सोशल मीडिया से
0: मेरे साथ इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे. बट लेट मी आल्सो ब्रिंग इन डॉक्टर विक्रम सिंह हु स्टेज विद अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट. सर, आर दीज पेटी क्राइम्स, पेटी क्रिमिनल्स, जस्ट दीज रोड साइड बॉयज, और कुड दिस बी समथिंग फार मोर सिनिस्टर, फार मोर डेंजरस? मोलोटोव कॉकटेल्स टुडे, it could be assault rifles being used against civilians or VAVPs tomorrow.
2: Good evening once again, Gaurav ji. This is a shift in policy and strategy of the ISI, they have used a social media influencer, that is Shahzad Bhatti. And you would see, apart from Molotov cocktails, they also have sophisticated weapons like pistols, IEDs, having Pakistan Ordnance Factory markings, large number of cartridges, as also the large, they have been successful in creating at least 200 recruits using 500 SIM cards. That is a cause of concern. And the change in technology is stand-alone use of CCTVs on sensitive railway stations, starting from Ambala right up to New Delhi and other places, going up to Kashmir. And the amount of investment is minimal, 2,000 rupees to 8,000 rupees, not even 10,000 rupees. So the large database, large people were first radicalized, then subjected to blackmail, and they become an active participants and willing accessories to the designs of the ISI through a social media handler. Social media, influencer is for the first time that has been used by the ISI.
0: Sir, stay with me. Arvind, ye jo 200 log hirasat mein liye gaye hain, इनके बारे में क्या कोई जानकारी अभी तक निकल कर आई है? इनको अदालत में पेश किया गया है? ये कौन से लोग हैं जिनको इतनी आसानी से सोशल मीडिया पर रेडिकलाइज किया जा सकता है?
1: देखिए, ये यंगस्टर हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और मोस्टली जो गैंगस्टर है उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं. और अच्छा, शहजाद भट्टी खुद को गैंगस्टर बताता है, लेकिन इसका जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है. आबिद जट, अजमल गुजर जो ये ISI के हैंडलर हैं, वो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं. और जैसे ही कोई लड़का उनके कॉन्टैक्ट में आता है, फिर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद शहजाद भट्टी से कॉन्टैक्ट कराया जाता है. उसके बाद बेसिंग पर काम दिया जाता है. मसलन अगर रांची के RSS ऑफिस की बात करें तो जो दो लड़के पकड़े गए थे वो बेरोजगार थे और उनके उसके बाद शहजाद भट्टी ने उससे कांटेक्ट किया, कुछ पैसे दिए और उसके बाद दोनों लड़के जाकर पेट्रोल बम फेंकते, हालांकि वो ब्लास्ट नहीं हुआ था. इसी तरह से पंजाब में जो BSF ऑफिस के बाहर ID ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी सोशल मीडिया के जरिए उस लड़के को रिक्रूट किया गया था. तो ये लड़के मोस्टली कोई काम नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कई ऐसे हैं जो गन के साथ अपनी पिक्चर डालते हैं, उनको टारगेट किया जाता है. तो जो ISI का पूरा मॉड्यूल है, जो ISI का एक कॉल सेंटर है, वो ऐसे लड़कों को रिक्रूट करता है सोशल मीडिया के जरिए. उसके बाद टास्क
0: ISI का अपना कॉल सेंटर है इस तरह के काम के लिए. लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के तो थे, ISI अपना अलग अब इस तरह का कॉल सेंटर चला रहा है. लेकिन कितना कठिन है, वो ब्रिंग इन डॉक्टर विक्रम सिंह वंस अगेन. डॉक्टर सिंह, हाउ डिफिकल्ट इज इट, वन टू आइडेंटिफाई वन सच अ कॉल सेंटर, टू द पीपल दे आर इन टच विद, एंड थ्री दीज यंगस्टर्स हु आर यू नो सो फ्रीक्वेंटली ऑन सोशल मीडिया. डेटा इज चीप बट देन इट्स ऑल्सो बींग यूज टू रिक्रूट स्लीपर सेल्स, मॉड्यूल्स, गॉड फॉरबिड फ्यूचर टेररिस्ट. हाउ इजी इज इट टू रेडिकलाइज देम?
2: Gaurav ji, you have put a very right question, that it is extremely, extremely difficult to get hold of them, but not insurmountable. Our technology and technical prowess is such that it is easy to identify. Not easy, I would say. You have to work overtime, beyond office hours and 24/7 to get hold of the links and the keywords. As also, I would not disclose everything in the arsenal, but yes, you have to work. Use the technology like machine learning, AI and other tools that you have. And go also to have your social media patrolling. Multiple tools, multiple directions, multiple agencies. And what you have is a result, something as spectacular as this. But yes, it is very difficult, but not insurmountable.
0: And look at the arrests that are taking place. It's also almost pan-India. 44 detained in Punjab, 15 in Rajasthan, in Telangana, in Karnataka, in Maharashtra, 8 detained, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, 3 in Karnataka, Gujarat, Telangana, Himachal, J&K and Kerala, 2 each. एक तरह से देखा जाए तो देशभर में अरविंद इनका ये मकड़जाल, आतंक का ये मकड़जाल देशभर में फैला है.
1: बिल्कुल, और इसीलिए कोऑर्डिनेटेड वे में ये ऑपरेशन चलाया गया. 500 से ज़्यादा लोगों का डेटा सेंट्रल एजेंसियों को मिला था. उसके बाद सेंट्रल एजेंसियों ने अलग अलग स्टेट को वो डेटा दिया और उसके बाद फिर 12 अगस्त से 14 अगस्त तक ये ऑपरेशन चला था. किसी को भनक भी नहीं लगी थी और कोऑर्डिनेटेड वे में ये ऑपरेशन चला. कई जो हमें जानकारी मिली है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जिनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जिनकी संख्या 250 से ज़्यादा है. और ये लगातार अभी जारी रहेगा. सोशल मीडिया पर खासतौर से सेंट्रल एजेंसियों की नजर बनी हुई है.
0: Keep tracking that story, Arvind. I will come back to you. Four more. These operations continue. 200 have been arrested. 250 have been detained for questioning. 50 others have been picked up for questioning, not arrested yet. And there are 500 data cards and mobile numbers that are under the scanner. We'll be tracking this story very closely. Dr. Vikram Singh and Arvind, many thanks for joining me. That is all I have for you on this special edition of India First. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.

0: आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था?
1: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं।
2: তার পরিবার গতকাল রাতেই রিয়্যাক্ট করেছেন, মেল করে মাননীয় সোনিয়া গান্ধীকে, মাননীয় মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানিয়েছেন। তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করেন। এই হাই অ্যাপ্রিচমেন্ট কা পলিটিক্স হে জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হ্যায়, ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হ্যায়। এক খাস ভোট ব্যাঙ্ক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হ্যায়।

0: दिमागी मनुवादी विचार का ही आदमी उसको दिमागी नक्सल कहेगा, जो परोपकारी है, जो सत्य पर चलता है, जो संविधान में यकीन करता है, ये दिमाग से मनुवादी हैं। इसलिए जो सेकुलर हैं, मानवतावादी हैं, परोपकारी हैं, सत्य पर अहिंसा पर चलने वाले हैं, उनको ये नक्सल कह रहे हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा है लाल किले की दीवार से, दिमागी नक्सलवाद, प्रधानमंत्री बताएं दिमागी नक्सलवाद क्या होता है? जो नक्सल को अगर आप जोड़ते हैं दिमाग के साथ, तो उसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं और उसकी मुखालफत नहीं की जा सकती। रिजिजू जी और प्रधानमंत्री से बड़े अदब से कहूँगा, आप जबान से तो बोल गए हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता कि दिमागी नक्सल होता क्या है।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Good evening, viewers. Big news coming in on a special edition of the News Track. There's finally some breakthrough on day 25 of the Jharkhand student protest. And let's quickly take you to the key developments. Development number one is that Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has announced that exams conducted by the TDPL, remember the contentious examining body in Jharkhand, they have all been cancelled. That's right. The JSSC CGL exam has been scrapped. And as you can see on your screens, that has resulted in students already starting to celebrate, because this, remember, was one of their key demands for which they were protesting on the streets of Ranchi for the past 3.5 weeks. However, their other demand is of a CBI probe. Now, that is yet to be agreed upon. The state government has formed an inquiry panel, a CID probe, which is, of course, remember, monitored by the state government to look into this probe. This panel will be headed by a retired judge here. Now, after the victory of the students in Jharkhand, student leader Devendra Mathur has said that he will end his hunger strike, which, remember, has been going on for almost as long as the protest in Jharkhand to begin with. And as you can see on your screens right now, Mathur has been celebrating this victory with the Indian flag. So big news coming in at this point. All exams that were conducted from the contentious examining authority body called the TDPL, that has been scrapped. And the key exams that have been scrapped is the JSSC CGL. And also that has been scrapped is also the key demand, however, of a CBI probe that is yet to be accepted here. We understand that a state-monitored CID probe has been set up. It has set up an inquiry panel, which will be headed by a retired judge. So let us put things in perspective. What were these students protesting for the past 24 days? They wanted the following two exams to be scrapped, because they had claimed that these exams were conducted with a lot of irregularities by the TDPL. Now, the two exams that we're talking about which have been scrapped, one is, of course, the Jharkhand Public Service Commission, the 14th JPS. Okay, let me quickly go across to Irfan Ansari, Jharkhand Minister, joining us on the phone line at this point. Irfan ji, humse baat karne ke liye bahut bahut dhanyawad India Today par. सबसे पहले क्या बता सकते हैं कि क्या क्या निर्णय लिए गए हैं हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानना चाहते हैं कि छात्रों ने ये मंजूरी की है क्या, उन्होंने ये डिमांड्स एक्सेप्ट किए और अपने अनशन तोड़ने के लिए रेडी है?
1: आज आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री जी थे, सभी मंत्री थे हम लोग, और लगभग हमें लगता है कि 6 घंटा ये बैठक चला, एक एक बिंदुओं पर हम लोगों ने जांच किया, और छात्र हित में उनके जो 24 दिनों तक वो लोग आंदोलन थे, इसको देखते हुए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उनकी जो मांग थी, पहली मांग थी कि आप जेपीएससी को आप कैंसिल करो, तो जब 4 मंत्रियों की कमेटी हम लोगों ने बनाया था, उस समय ये फैसला हो गया था कि हाँ, हम लोग जेपीएससी कैंसिल करेंगे। उसके बाद ये फैसला आया कि नहीं, आप जेसीएससी के तहत सीजीएल एग्जाम जो है उसको भी आपको कैंसिल करना होगा, तो सरकार थोड़ी पीछे हट रही थी, लेकिन इतना दबाव था छात्रों का कि नहीं, आपको सीजीएल एग्जाम को हर हाल में कैंसिल करना होगा। इसी मुद्दे पर आज काफी देर तक वार्ता भी हुई, सभी ने अपनी राय दी, और अंततः ये हुआ कि हम लोग सीजीएल एग्जाम को भी कैंसिल करेंगे, ये सहमति बन, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। छात्र का जो डिमांड था, जो पुरानी मांग थी, उसको हम लोगों ने पूरा किया। तीसरा जो मांग था कि TDPL जितने भी एग्जाम अब तक कंडक्ट किया गया है, ये TDPL कंपनी कहाँ की है, कैसे झारखंड में आई, वो जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया, ये सारे एग्जाम को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उनके द्वारा लिए गए एग्जामों को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो संभवतः सारी मांग हम लोगों ने मान लिया है। अब ये दूसरा पक्ष ही आ रहा है, जो सीजीएल में जो हजारों बच्चे जिनका ज्वाइनिंग हो चुका था, वो लोग भी आज थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रो रहे थे बच्चे लोग। लेकिन चलिए, हम लोगों ने छात्र हित में काफी दबाव भी था, आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी का भी प्रेशर था, तो सरकार ने माना है, और हम ये कह सकते हैं कि छात्रों की जीत भी है, सरकार भी है।
0: अंसारी जी, हम बहुत खुश है कि छात्रों की जीत है, और लग रहा है कि छात्र भी खुश है, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट आपने ये बात बोला कि हमने उनके सारे मांगे पूरी की है, जहां तक हमें याद है उनकी एक मांग ये भी थी कि एक सीबीआई प्रोब हो इस पूरे घटनाक्रम में, जो घोटाले के जो एलिगेशन आ रहे उसके अंदर एक सीबीआई प्रोब हो। बट जहां तक हमें पता है, जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, उसका मतलब एक सीआईडी प्रोब, एक स्टेट मॉनिटर्ड प्रोब हो रहा है। क्या इससे स्टूडेंट्स सहमत है, उन्होंने मंजूर किया इस स्टेप को?
1: देखिए, झारखंड फर्स्ट स्टेट, यहाँ की सरकार, यहाँ की एजेंसी, यहाँ की सरकार है, यहाँ उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। छात्र जब आंदोलन नहीं कर रहे थे उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया, जेपीएससी की चेयरमैन को अरेस्टिंग हुई है, 19 लोग अब तक लगभग 19 लोगों से अधिक लोग अरेस्टिंग हो चुका है, हम लोग उन तक पहुंच रहे हैं जहां से गड़बड़िया हुई है। तो हमारा एजेंसी काम कर रहा है। अब हमें लगता है कि युवाओं का जो सबसे बड़ा मांग था वो सीजीएल को रद्द करना, तो सीजीएल हम लोग रद्द कर दिया। अब ये प्रोसेस कहाँ आ रही है? सीजीएल में ये साफ लिखा गया था कि आपको कोर्ट ने पहले जजमेंट दिया था कि सीजीएल एग्जाम को बहाली किया जाए, अब आपको आप सीबीआई की जांच नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने कर दिया, बात खत्म हो गई, मामला खत्म है। युवाओं की जो मांग थी, पुरानी मांग थी, हम लोगों ने पूरा कर दिया।
0: अंसारी जी, ये बात फिर हमें तो छात्र से सुनना पड़ेगा वेदर उनकी सारी ये बात खत्म हो गई कि नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके तरफ से आपको लगता है कि जो भी राज्य सरकार कर सकती हो किया था। मेरे आखिरी सवाल अंसारी जी से, बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, विपक्ष की तरफ से ये काफी आलोचना भी आए थे, काफी एलिगेशंस भी आए थे कि इस समय लाठीचार्ज हुआ था, छात्र के ऊपर बल का प्रयोग यूज किया गया था और उसको लेकर भी काफी आलोचना हुई थी। क्या राज्य सरकार इसके अंदर भी जांच, जो जांच पैनल लगाई गई वो ये भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या छात्र के ऊपर अननेसेसरी फोर्स यूज किया गया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे?
1: देखिए छात्र हमारे बच्चे, ठीक है, आप दिल्ली में, हम यहाँ पे, मैं ग्राउंड पर हूँ, लाठी चला है, थोड़ा बहुत लाठी चला है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप देखिए घायल कहाँ हुए, किसका सर फूटा, आप बता दें भी। मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, आदरणीय हमारे जन नेता राहुल जी का भी निर्देश है, एक भी लोग घायल नहीं हुए, हल्का फुल्का लगा है, लेकिन हम लोग बैठ हुए, हमारे बच्चे हैं वो, हम लोग लाठी क्यों चलाएंगे उन पर? यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है कि हम अपने बच्चे और बच्चे पर गोली चला दें। हम बिहार में गोली चला दिया, वहां की बात आप नहीं करेंगे, लेकिन आप झारखंड की बात करेंगे। लेकिन देखिए, चलिए आंदोलन हुआ, थोड़ा 19-20 हुआ है, हम लोग बैक हुए, सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, पहली बार हमें लगता है कि सरकार ये जानते हुए भी कि हम लोग बैक हो रहे हैं, हमारी गलती नहीं है, फिर भी हम बैक हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के हित में, बच्चे सड़क पर हैं, बच्चे बरसात में बैठे हुए हैं, बच्चे धरना दे रहे हैं, तो उनका आंसू पोंछना भी तो हमारा।
0: अंसारी जी था, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देवेंद्रनाथ महतो, द स्टूडेंट लीडर हु हैज बीन प्रोटेस्टिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द पास्ट 25 डेज इज जॉइनिंग अस। देवेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि लग तो यही रहा है कि काफी आपके जो छात्र थे, आप जैसे लोग जो काफी दिन से अनशन पर थे, वो खुश है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा देवेंद्र जी कि क्या आप रजामंदी, क्या आपकी रजामंदी है जो सरकार की तरफ से जो निर्णय ले गए हैं, और क्या आप सब इस अनशन को तोड़ने वाले हैं? अब
2: जी अपना अनशन को मैं सम्मानजनक तोड़ूंगा और तोड़ने का घोषणा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा जन जो है कि जो हम लोग का डिमांड है, सरकार हम लोग की है, और इसको लेकर के इस आवाज को बुलंद करने में जो भी छात्र, अभिभावक, प्रेस मीडिया के बंदे और प्रशासन सहयोग के लिए सबको आभार और धन्यवाद। हालांकि मेरा अनशन को तोड़ने की घोषणा करता हूं, लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहेगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहता हूं जिस पर आने वाले दिनों पर जो अभी बच्चे LKG 1-2 नौवां 10वां मैट्रिक इंटर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कल का दिन में प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, उनको सड़क पे आना ना पड़े और दूसरा कोई माँ का बेटा ऐसा कुर्बानी ना दे, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, बहुत एग्जाम पर सीबीआई होते हुए देखा है, CID होते हुए देखा है, बस गिने चुने स्टूडेंट को न्याय मिलती है, बाकी मैक्सिमम छात्र को न्याय नहीं मिल पाता।
0: देवेंद्र जी, आपने ये घोषणा की है इंडिया टुडे के ऊपर और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि आप ये अनशन को तोड़ने वाले हैं। आप 15 दिन से एक हंगर स्ट्राइक पर है, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आप कब और किन परिस्थितियों में इस अनशन को तोड़ेंगे? जैसे दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति आकर आपको जूस या कुछ पानी ऑफर करता है, आप क्या आपने सोचा है कि आप किस समय, किन के बीच आप इस अनशन को तोड़ेंगे? क्या आप ये डिटेल्स शेयर कर सकते हैं?
2: जी, अभी ये तो तय नहीं हुई है, लेकिन हम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं चूंकि बाहर निकलना चाह रहा हूं तो हमको बाहर निकलने नहीं दी जा रही हॉस्पिटल से। बोला जा रहा है कि आप अनशन, हाँ हाँ मालूम।
0: देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे ये सवाल था कि आप इस शानदार जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं, क्योंकि काफी काफी पिछले
2: देखिए श्रेय कोई एक को नहीं, श्रेय उनका, तमाम छात्रों का, तमाम अभिभावक का, तमाम शिक्षकों का, तमाम आप प्रेस मीडिया बंधुओं का, प्रशासन का, सरकार का, जी मैंने हर एक कोई इसका बधाई के पात्र है, हर कोई धन्यवाद के पात्र है।
0: देवेंद्र जी, पिछले कई हफ्तों से एक पैरेलल एक ड्रॉ किया जाता था कि जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो एजिटेशन चल रहा था और जो रांची में हो रहे थे उसमें समानता असमानता निकाली जा रही थी। आप अब जब ये खत्म हो चुका है, आप बोल रहे हो कि आप अनशन तोड़ने वाले, आपके बाकी बंधु वो भी इस समय जश्न का माहौल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, जो राज्य सरकार का जो एटीट्यूड था स्टूडेंट्स की तरफ, क्या आप उससे खुश थे, क्या आपको पहले से वो मैसेज दिया जा रहा था कि वो चाहते थे स्टूडेंट्स के हित में बोलना और इस अनशन को तोड़वाने के लिए वो कोऑपरेट कर रहे थे, आपको आप क्या कहना चाहेंगे उस पर?
2: देखिए 20 जुलाई को जब हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे, 21 जुलाई से जब जांच हुई और पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी का चेयरमैन का गिरफ्तार होना अभी तक एक आध राज्य में ही ऐसा हुआ है, तो इससे तो गंभीरता झलक रही थी। और हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि वार्ता और संवाद से ही सॉल्यूशन है, और लगभग 3 राउंड हमारे डेलीगेट्स और सरकार के बीच वार्ता हुई और सारे सबूत को, सारे साच को और सारे बातों को तर्क के आधार पे रखा और सरकार भी उस बात को मानी। हालांकि वक्त लगा, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन सरकार को भी समझने में थोड़ा टाइम लग गया, इस पर कोई बात नहीं, लेकिन इसी के वजह से जो है कि आज ये हासिल हो पाया।
0: देवेंद्र जी, एक जो मांग आपकी तरफ से थी और आपके जो साथ बंधु जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका डिमांड था कि आप सीबीआई प्रोब चाहते थे इन सब जो पेपर लीक और जो भी आरोप लगाए जा रहे थे उसके अंदर। अब जो खबर आई है, जो अनाउंसमेंट आई है सोरेन सरकार से कि वो एक स्टेट मॉनिटर सीआईडी प्रोब है, क्या इस चीज से आप लोग सहमत है? नहीं, मैं अपने प्रश्न वापस पूछूंगा। आपकी डिमांड थी कि सीबीआई प्रोब होगी, सीबीआई प्रोब के जगह पर एक स्टेट मॉनिटर्ड प्रोब की घोषणा की गया, क्या आप इससे सहमत हैं?
2: देखिए मेरा कहना है ना कि जरूर संघर्ष तो जारी रहेगा, बाकी हम लोग छात्र से इसका निर्णय लेंगे आगे का, लेकिन मेरा कहना है कि मैं अपने आंखों से यही सीजीएल जो आज रद्द हुई इसको 29 जनवरी 2024 को भी जेएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन करते हुए रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर रामली हुई, फिर आज रद्द हुआ, और कई एग्जाम को मैंने सीआईडी का जांच करते हुए देखा है, सीबीआई का जांच करते हुए देखा है, रद्द होते हुए देखा है। अभी तक हमने यही देखा है कि इससे छात्र को न्याय नहीं मिल पाया, बस गिने चुने छात्र को ही न्याय मिल पाता है। मेरा इच्छा है कि जो युग युग तक छात्र को न्याय मिले और कोई माँ का दूसरा बेटा इस तरह का कुर्बानी देना न पड़े, इसीलिए मुझे सरकार से ऐसा सिस्टम चाहिए जो गारंटी दे मुझे कि आने वाले दिनों पर पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, मुझे गारंटी चाहिए इस बात का कि सर्विस नौकरी ना हो, और उस गारंटी सिस्टम पे अगर कोई हिम्मत करता है धांधली का, सर्विस का, पेपर लीक का, तो उसको आजीवन कारावास हो, तभी ऐसा सिस्टम के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा।
0: तो देवेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी गारंटी नहीं फुलफिल की जाती है, अगर आपको आप पता चलता है कि और भी ऐसे लीक पेपर लीक्स हो और भी ऐसे घोटाले सामने आते हैं, क्या आप वापस अनशन के रात पथ पर आएंगे?
2: मैं संघर्ष को जारी रखूंगा, अब संघर्ष का राह बहुत हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी सचिव को देखें, आईएएस को देखें, आईपीएस को देखें, डॉक्टर इंजीनियर को देखें, वो एक प्रतियोगी परीक्षा को फेस करके ही आया, नौकरी बेचना इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। नौकरी बेचना मतलब इस दुनिया का आत्मा को बेचना, ये इसको उद्योगपति बनने नहीं देंगे हम। एग्जाम रद्द कर दिए, जांच बैठा दिए और फिर अगला बार फिर पेपर लीक कर देंगे, ये सिस्टम अब स्वीकार नहीं होगा। मुझे गारंटी तो चाहिए, इसके लिए मुझे जहां तक संघर्ष करना पड़ेगा, अगर संविधान को भी संशोधन करना पड़ेगा तो वहां तक के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
0: ओके, देवेंद्र माथुर जी,
2: पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी छात्रों को न्याय मिले, एक ऐसा सिस्टम चाहिए।
0: ओके, देवेंद्र माथुर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडिया टुडे के दर्शकों से हम सब आपको बधाई देते हैं कि आपने संघर्ष लड़ा है और हम आपके साथ यही आशा रखते हैं कि ये जो गारंटी है, जो स्टेप्स लिए गए हैं, उससे सारे झारखंड और पूरे राज्य के स्टूडेंट्स को न्याय मिले और ये गारंटी जिसकी आप बात करें वो गारंटी बने रहे। थैंक यू सो मच देवेंद्र माथो, हु वाज ऑफ कोर्स द फेस ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन रांची। ही वाज स्पीकिंग टू अस इन इंडिया टुडे। ही हैज कंफर्म्ड इनडीड दैट ही विल ब्रेक हिज फास्ट। ही हैज नॉट रियली स्पेसिफाइड द डिटेल्स ऑफ व्हेन एंड वेयर ही विल डू इट, but he has said that yes, he will continue his agitation and he will be closely monitoring whether the state government lives up to the promises it has made or not. Let me now go across to my colleague Ashutosh, who has been waiting for us quite patiently while we have been speaking to first the Jharkhand minister Mr. Ansari and then to Devendra Mathur. Ashutosh, you have been covering these protests in Jharkhand right from the inception for the past 3.5 weeks, so perhaps you are best placed to tell our viewers as to what really led to this deadlock here. Was there a key breakthrough that was achieved at some point during the talks which led to these celebratory scenes that we are now seeing in Ranchi?
3: From day one, I have been reporting that it is indeed in the hands of the government to agree on the demand. Remember, the government was citing reason that, look, all these exams and appointments were challenged in High Court and Supreme Court. So government is like literally hands are tied. And remember, there is a government. Something is called government. Government can do anything and everything. Perhaps now let's look at it on the other side. Despite of all the decision has been taken, now remember 2,200 people have already been appointed. It's been 8 months. They are working under the CGL, JSSC, who cleared exam. Of course, there have been irregularity, backdoor entry, settings and everything all. But now they have been appointed. They are creating now ruckus. They'll and more likely, they will challenge this decision, the cabinet decision in the High Court and perhaps even in the Supreme Court. But for now, it's a big victory of those students. 25th day. All they were demanding earlier, the government, surrendered when the JPSC were demanded, the exams were cancelled. The largest demand, the reason is the JSSC and the CGL is the largest employer provider, B grade, C grade category, D grade category. And from 2014, when earlier it was 700 job opportunities were created, then there were irregularities, and later it turned out to be 1200, then 1700. And finally, well, 8 months ago, people were employed after all the process of examination. Of course, there were irregularity, including Abhay Tiwari episode. So 2,200 people, more than that, were recruited. Now they will be hitting the street. At the same time, you asked what factor exactly worked. It is the pressure of the people who were hitting the street for 25 days. They have been protesting. More importantly, there was also pressure within the opposition forces. Now Hemant Soren at large, if you see inner setup, that he is also part of the UPA or the opposition alliance. And even today, when we say this was the second time when Rahul Gandhi raised the voice. Earlier, he issued a statement. He also issued a statement when the lathi charge took place. And then today when he wrote a letter, that he stands with the students and on those demand. And you heard Irfan Ansari saying that there was also factors. So within the alliance, if one of the key alliance factor and the leader from the opposition in the parliament, Rahul Gandhi, also writes a pressure, that also makes a pressure on Soren government.
0: Ashutosh, so that was my next question to you. Let's talk about the politics of it, because this happened right on the heels of a similar agitation that we saw in Jantar Mantar. There was a lot of political parallels being drawn between the way the Congress party, for instance, was dealing with the protests at Jantar Mantar and how it was viewing the protests in Ranchi. How much of it was due to the compulsion politics for Soren when it comes to Hemant Soren? Because Rahul Gandhi very clearly had come out a week ago and had said that he stands with the protesting students in Jharkhand. He'd also condemned the police excesses or the lathi charge and tear gas shelling that had happened, I believe, 1 week ago to this date, last Monday. And today itself, he had written a letter to Hemant Soren asking for these demands to be met. In your understanding of tracking the political machinations that was going on behind the scenes, was that a key factor which kind of compelled Hemant Soren to give in and stoop the extra mile to give in to these protesting students?
3: Two. First, the democratic peaceful. Remember, Hemant Soren himself in all the statements have said the students are exercising their fundamental right of protest. And the government did acknowledge that protest has been peaceful. Even on the day of the assembly march till 6 p.m., everything was peaceful. It all happened when students reached at the assembly. And then post-evening in the dark, what has happened, the crackdown on the student, they were vacated, there was lathi charge. And so far, daylight, it has been unlike what we have seen at Delhi's Jantar Mantar. So the comparison or the parallel parallel can be drawn. It was democratic process. Students were very peaceful. And when the government itself, the head of the government says the students are exercising the fundamental rights of peaceful protest. And perhaps why the government even agreed. Today was the third round of negotiations and the talks, and then the emergency meeting was called. And it was more often, you know, understood that later or sooner the government will come on this decision. Secondly, the political aspect. The BJP was very much furious, and that's what the democratic process of India is, that the opposition is duty bound to stand with the people who are agitating on the fundamental issue. There have been irregularities, and it is accepted nowhere than the government itself. When they arrested 19 people, there is a massive CID probe also happening. As far as CBI probe is concerned, remember, the Enforcement Directorate has also already filed a preliminary examination. Now, why it is not expanding that probe area has been more than 10-15 days, it is yet to be known. But there is a central agency which has already taken a case because the CID investigation FIR has been filed. All ED needs an FIR in case of financial impropriety or irregularity. So they have a central agency already, you know, on the way. But when they were going to begin the probe, that is yet to be known. The CBI probe, okay. I was there speaking to the students. See, if you see the Jharkhand status, the socio-economic, the students only wanted a social security. In a state like Jharkhand, government job is the biggest social security cover. So perhaps they were not as adamant on CBI probe as they wanting to cancel this CGL, one of the largest recruiter, the JSSC CGL examination. Hence, we see the kind of celebration is unfolding at Jaipal Singh Munda Stadium. And also, because of the peaceful protests, the political group of the Alliance, Congress, Rahul Gandhi's pressure, the letter, everything worked, and perhaps why this seems to be a big victory of the students.
0: Indeed, Ashutosh. And speaking of the students, do stay on with us, Ashutosh. Let's listen into both sides of the spectrum because we've gotten these reactions. Let's first listen in to Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, his announcement of all the demands that had been met. And after that, we'll also listen into some of these protesting students that you see on your screen. Let's listen into Hemant Soren.
4: JPSC ka, jo 14th JPSC ki baat hai, mujhe lagta hai ki hamare maniye mantriganon ke sad, टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं, उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों के तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
5: अभी 11 टू 13 हमारी मांग पे हम कायम हैं। जब तक 11 टू 13 का फैसला नहीं होता यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है, यह पहला कदम है, यह पहला जश्न है, अभी बाकी है, अभी हमारी लड़ाई अधूरी है।
0: Let me also go across to my colleague Satyajit, who's joining us at this point. Satyajit, हमने अभी सुना कोई छात्र बोल रहे कि और हमने देवेंद्र माथुर से भी बात की, they were very clear that ये खत्म नहीं हुआ उनका agitation, वो अभी भी संघर्ष चलने वाला है, which means that सोरेन गवर्नमेंट पर ये दबाव बने रहेगा छात्रों की तरफ से कि जो उन्होंने अभी जो वादे किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो ढंग से।
6: Of course, they are saying that they'll again have a dialogue with the government, but for now, they seem to be more than complacent. They seem to be more than glad. There was an overwhelming response from the protesters' side. They were dancing in the rain. They were having jubilation. They were having celebration. Their major demand has been conceded. Their major demand was the cancellation of JSSC CGL examinations, and that has been conceded. Hemant Soren has said that all the exams that were conducted by TDPL, either the examinations were conducted or the results were published by TDPL. If it has happened so in the recent past, all the exams will stand cancelled. And a major announcement was that since 2014, as many exams were conducted, will be investigated by CID. So major, all the main demands have been conceded. They have been conceded by the government, like cancellation of JPSC 14th prelims. And after that, JSSC CGL examinations, in which 2,250 candidates were recruited. They have lost their job. They were sulking and they were seen fuming in rat when the CM's cavalcade crossed the outside the Mantralaya. They were seen raising the slogans, and it is for sure now they are going to move to the court, and the situation has arisen of that. There could be a confrontation between the successful candidates and those who are protesting since the last 24 days.
0: So that's a very important point you're mentioning, Satyaji, that this doesn't necessarily clear all the problems, because a lot of students, and the Health Minister, Mr. Ansari, when he spoke to us, also admitted that those students who have cleared the exams, they will not be happy with these exams being scrapped. Having said that, Satyaji, thank you so much for joining us. Let's once again listen into Devendra Mahato. He spoke exclusively to India Today just a few minutes ago. Listen into what he had to say about what led to this resolution and what happens next for the student movement. Devendra ji, humse baat karne ke liye bahut bahut dhanyawad. Main aapko badhai dena chahunga, kyunki lag to yahi raha hai ki kafi aapke jo chhatra the, aap jaise log jo kafi din se anshan pe the, wo khush hai. Main sabse pehle aapse ye janna chahunga, Devendra ji, ki kya aap razamandi, kya aapki razamandi hai jo sarkar ki taraf se jo nirnay liye gaye hain, aur kya aap sab is anshan ko todne wale hain ab?
2: अपना फंक्शन को मैं सम्मानजनक तोड़ूंगा और तोड़ने का घोषणा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा जन जो है कि जो हम लोग का डिमांड है, सरकार हम लोग की है, और इसको लेकर के इस आवाज को बुलंद करने में जो भी छात्र, अभिभावक, प्रेस मीडिया के बंदे और प्रशासन सहयोग किए, सबको आभार और धन्यवाद। हालांकि मेरा अनशन को तोड़ने की घोषणा करता हूं, लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहेगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहता हूं जिस पर आने वाले दिनों पर जो अभी बच्चे LKG 1, 2, 9वां, 10वां, मैट्रिक, इंटर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कल का दिन में प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, उनको सड़क पे आना ना पड़े और दूसरा कोई माँ का बेटा ऐसा कुर्बानी ना दे, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, बहुत एग्जाम पर CBI होते हुए देखा है, CID होते हुए देखा है, बस गिने चुने स्टूडेंट को न्याय मिलती है, बाकी मैक्सिमम छात्र को न्याय नहीं मिल पाता।
0: देवेंद्र जी, आपने ये घोषणा की है इंडिया टुडे के ऊपर और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि आप ये अनशन को तोड़ने वाले हैं। आप 15 दिन से एक हंगर स्ट्राइक पर है, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आप कब और किन परिस्थितियों में इस अनशन को तोड़ेंगे? जैसे दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति आकर आपको जूस या कुछ पानी ऑफर करता है, आप क्या आपने सोचा है कि आप किस समय, किन के बीच आप इस अनशन को तोड़ेंगे? क्या आप ये डिटेल्स शेयर कर सकते हैं?
2: जी, अभी ये तो तय नहीं हुई है, लेकिन हम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं चूंकि बाहर निकलना चाह रहा हूँ तो हमको बाहर निकलने नहीं दी जा रही हॉस्पिटल से। बोला जा रहा है कि आप अनशन, हाँ हाँ मालूम।
0: देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे ये सवाल था कि आप इस शानदार जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं, क्योंकि काफी पिछले,
2: देखिए, हाँ, कोई एक को नहीं, श्रेय उनका, तमाम छात्रों का, तमाम अभिभावक का, तमाम शिक्षकों का, तमाम आप प्रेस मीडिया बंधुओं का, प्रशासन का, सरकार का, जी मैंने हर एक कोई इसका बधाई के पात्र है, हर कोई धन्यवाद के पात्र है।
0: देवेंद्र जी, पिछले कई हफ्तों से एक पैरेलल एक ड्रॉ किया जाता था कि जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो एजिटेशन चल रहा था और जो रांची में हो रहे थे उसमें समानता असमानता निकाली जा रही थी। आप अब जब ये खत्म हो चुका है, आप बोल रहे हो कि आप अनशन तोड़ने वाले, आपके बाकी बंधु वो भी इस समय जश्न का माहौल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो राज्य सरकार का जो एटीट्यूड था स्टूडेंट्स की तरफ, क्या आप उससे खुश थे? क्या आपको पहले से वो मैसेज दिया जा रहा था कि वो चाहते थे स्टूडेंट्स के हित में बोलना और इस अनशन को तोड़वाने के लिए वो कोऑपरेट कर रहे थे? आपको आप क्या कहना चाहेंगे उस पर?
2: देखिए, 20 जुलाई को जब हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले तो 21 जुलाई से जब जांच हुई और पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी का चेयरमैन का गिरफ्तार होना अभी तक एक आध राज्य में ही ऐसा हुआ है, तो इससे तो गंभीरता झलक रही थी। और हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि वार्ता से और संवाद से ही सॉल्यूशन है। लगभग 3 राउंड हमारे डेलीगेट और सरकार के बीच वार्ता हुई और सारे सबूत को, सारे साच को और सारे बातों को तर्क के आधार पे रखा और सरकार भी उस बात को मानी। हालांकि वक्त लगा, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन सरकार को भी समझने में थोड़ा टाइम लग गया, इस पर कोई बात नहीं, लेकिन इसी के वजह से जो है कि आज ये हासिल हो पाया।
0: देवेंद्र जी, एक जो मांग आपकी तरफ से थी और आपके जो सात बंधु जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका डिमांड था कि आप सीबीआई प्रोब चाहते थे इन सब जो पेपर लीक और जो भी आरोप लगाए जा रहे थे उसके अंदर। अब जो खबर आई है, जो अनाउंसमेंट आई है सोरेन सरकार से कि वो एक स्टेट मॉनिटर सीआईडी प्रोब है, क्या इस चीज से आप लोग सहमत है? नहीं, मैं आपने प्रश्न वापस पूछूंगा। आपकी डिमांड थी कि सीबीआई प्रोब होगी, सीबीआई प्रोब के जगह पर एक स्टेट मॉनिटर्ड प्रोब की घोषणा की गया, क्या आप इससे सहमत है?
2: देखिए, मेरा कहना है ना कि जरूर संघर्ष तो जारी रहेगा, बाकी हम लोग छात्र से इसका निर्णय लेंगे आगे का, लेकिन मेरा कहना है कि मैं अपने आंखों से यही सीजीएल जो आज रद्द हुई इसको 29 जनवरी 2024 को भी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन करते हुए रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली हुई, फिर आज रद्द हुआ और कई एग्जाम को मैंने सीआईडी का जांच करते हुए देखा है, सीबीआई का जांच करते हुए देखा है, रद्द होते हुए देखा है। अभी तक हमने यही देखा है कि इससे छात्र को न्याय नहीं मिल पाया, बस गिने चुने छात्र को ही न्याय मिल पाता है। मेरा इच्छा है कि जो युग युग तक छात्र को न्याय मिले और कोई माँ का दूसरा बेटा इस तरह का कुर्बानी देना न पड़े, इसीलिए मुझे सरकार से ऐसा सिस्टम चाहिए जो गारंटी दे मुझे कि आने वाले दिनों पर पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। मुझे गारंटी चाहिए इस बात का कि सर्विस नौकरी ना हो, और उस गारंटी सिस्टम पे अगर कोई हिम्मत करता है धांधली का, सर्विस का, पेपर लीक का, तो उसको आजीवन कारावास हो, तभी ऐसा सिस्टम के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा।
0: तो देवेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी गारंटी नहीं फुलफिल की जाती है, अगर आपको आप पता चलता है कि और भी ऐसे लीक पेपर लीक्स हो और भी ऐसे घोटाले सामने आते हैं, क्या आप वापस अनशन के राजपथ पर आएंगे?
2: मैं संघर्ष को जारी रखूंगा, अब संघर्ष का राह बहुत हो सकता है, कई सरकार के हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी सचिव को देखें, आईएएस को देखें, आईपीएस को देखें, डॉक्टर इंजीनियर को देखें, वो एक प्रतियोगी परीक्षा को फेस करके ही आया। नौकरी बेचना इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। नौकरी बेचना मतलब इस दुनिया का आत्मा को बेचना, ये इसको उद्योगपति बनने नहीं देंगे हम। एग्जाम रद्द कर दिए, जांच बैठा दिए और फिर अगला बार फिर पेपर लीक कर देंगे, ये सिस्टम अब स्वीकार नहीं होगा। मुझे गारंटी तो चाहिए, इसके लिए मुझे जहां तक संघर्ष करना पड़ेगा, अगर संविधान को भी संशोधन करना पड़ेगा तो वहां तक के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
0: ओके, देवेंद्र महतो जी,
2: पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी छात्रों को न्याय मिले, एक ऐसा सिस्टम चाहिए।
0: ओके देवेंद्र महतो जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So you heard it from Devendra Mathur. It took 25 days for the protest at Ranchi to come to an end, and one hopes that these students you see celebrating on your screens finally get the justice they have long been fighting for. With that, it's time for a short commercial. On the other side is India Today Global with my colleague Geeta Mohan. Stay tuned.

वो वंशज उनके हो सकते हैं अपने दादा के, लेकिन वंदे मातरम के वो वंशज नहीं है। वंदे मातरम लिखा है, वंदे मातरम पूरे देश उसका इज्जत करता है, इससे किसी इंडिविजुअल आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो डिमांड करेंगे कि माफ़ी मांगिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोनिया गांधी के मुकाबले में देशभक्त ना अमित शाह हैं ना नरेंद्र मोदी हैं। सोनिया गांधी ज़्यादा बड़ी देशभक्त हैं बीजेपी के नेताओं के मुकाबले में, और माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है।

0: आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था?
1: दिमागी मनुवादी विचार का ही आदमी उसको दिमागी नक्सल कहेगा जो परोपकारी है, जो सत्य पर चलता है, जो संविधान में यकीन करता है। ये दिमाग से मनुवादी है, इसलिए जो सेकुलर हैं, मानवतावादी हैं, परोपकारी हैं, सत्य पर अहिंसा पर चलने वाले हैं, उनको ये नक्सल कह रहे हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा है लाल किले की दीवार से, दिमागी नक्सलवाद, प्रधानमंत्री बताएं दिमागी नक्सलवाद क्या होता है। जो नक्सल को अगर आप जोड़ते हैं दिमाग के साथ, तो उसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं और उसकी मुखालफत नहीं की जा सकती। रिजिजू जी और प्रधानमंत्री से बड़े अदब से कहूँगा, आप जबान से तो बोल गए हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता कि दिमागी नक्सल होता क्या है।

0: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को, देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं।
1: তার পরিবার গতকাল রাতেই রিয়্যাক্ট করেছেন মেল করে মাননীয় সোনিয়া গান্ধীকে, মাননীয় মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানিয়েছেন। তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করব। এই হাই অ্যাপ্রিচমেন্ট কা পলিটিক্স হে, জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হ্যায় ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হ্যায়। এক খাস ভোট ব্যাঙ্ক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হ্যায়।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: You are watching India Today.

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: कांग्रेस की आदत ही ऐसी रही, कांग्रेस ने वंदे मातरम को तो दिखंडित कर दिया था और उसके बाद देश भी दिखंडित हो गया। ये कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये तो है। लेकिन विषय ये है कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा ही वंदे मातरम का सम्मान सही से नहीं किया।
1: सोनिया जी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और जो वीडियो के फुटेज आ रहे हैं वो ये वंदे मातरम के प्रति असम्मान को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उस मानसिकता में राष्ट्रवाद बहुत एक तरीके से जो राष्ट्रवाद के प्रतीक है उसके प्रति उनको लेकर एक विशेष प्रकार का एक द्वेष भाव है, ये नहीं होना चाहिए। और देश के कानून का, देश के राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का सभी को सम्मान करना चाहिए।

0: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? पहले भी नहीं गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
1: दिस इज नथिंग बट अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स एंड इफ दे आर सो कीन टू फाइल केसेस फर्स्ट दे शुड ऑल्सो फाइल अगेंस्ट मिस स्वराज राइट मिस बासुरी स्वराज शी वॉकड आउट अपेरेंटली दैट्स व्हाट द सोशल मीडिया वीडियो शो दैट why there is no cases filed against them by the BJP Yuva Morcha and whether it's BJP Yuva Morcha ABVP or whether it is RSS we don't need certificates of being national or anti-national from them these are the same people who have not done anything for the freedom struggle their political mentors didn't even hoist the flag for 52 years

0: 12 अगस्त से 14 अगस्त तक दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, इन स्टेट में ये रेड्स हुई है और उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया है। आईईडी समेत जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो रिकवर हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी लड़कों को रिक्रूट करता है। परेशानी की बात एजेंसियों के लिए थी कि 20,000 से 25,000 में कोई भी लड़का वो पेट्रोल बम या आईईडी ब्लास्ट करने को तैयार हो जा रहा था। इस वजह से
1: अरविंद रहिए मेरे साथ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बट लेट मी ऑल्सो ब्रिंग इन डॉक्टर विक्रम सिंह हु स्टेज विद अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। सर, आर दीज पेटी क्राइम्स, पेटी क्रिमिनल्स, जस्ट दीज रोड साइड बॉयज, और कुड दिस बी समथिंग फार मोर सिनिस्टर, फार मोर डेंजरस? मोलोटोव कॉकटेल्स टुडे, इट कुड बी असॉल्ट राइफल्स बींग यूज अगेंस्ट सिविलियंस और VAVPs टुमारो।
2: Good evening once again, Gaurav ji. This is a shift in a policy and strategy of the ISI. They have used a social media influencer, that is Shahzad Bhatti. And you would see, apart from Molotov cocktails, they also have sophisticated weapons like pistols, IEDs having Pakistan Ordnance Factory markings, large number of cartridges, as also the large, they have been successful in creating at least 200 recruits using 500 SIM cards. That is the cause of concern. And the change in technology is stand-alone use of CCTVs on sensitive railway stations, starting from Ambala right up to New Delhi and other places, going up to Kashmir. And the amount of investment is minimal, 2,000 rupees to 8,000 rupees, not even 10,000 rupees. So the large database, large people were first radicalized, then subjected to blackmail, and they become an active participants and willing accessories to the designs of the ISI through a social media handler. Social media, influencer is for the first time that has been used by the ISI.
1: Sir, stay with me. Arvind, ye jo 200 log hirasat mein liye gaye hain, इनके बारे में क्या कोई जानकारी अभी तक निकल कर आई है? इनको अदालत में पेश किया गया है? ये कौन से लोग हैं जिनको इतनी आसानी से सोशल मीडिया पर रेडिकलाइज किया जा सकता है?
0: देखिए, ये यंगस्टर हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और मोस्टली जो गैंगस्टर है उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। और अच्छा, शहजाद भट्टी खुद को गैंगस्टर बताता है, लेकिन इसका जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। आबिद जट, अजमल गुजर, जो ये ISI के हैंडलर है, वो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं और जैसे ही कोई लड़का उनके कॉन्टैक्ट में आता है फिर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद शहजाद भट्टी से कॉन्टैक्ट कराया जाता है। उसके बाद टास्क बेसिंग पर काम दिया जाता है। मसलन अगर रांची के RSS ऑफिस की बात करें तो जो दो लड़के पकड़े गए थे वो बेरोजगार थे और उनके उसके बाद शहजाद भट्टी ने उससे कांटेक्ट किया, कुछ पैसे दिए और उसके बाद दोनों लड़के जाकर पेट्रोल बम फेंकते हैं, हालांकि वो ब्लास्ट नहीं हुआ था। इसी तरह से पंजाब में जो BSF ऑफिस के बाहर IED ब्लास्ट हुआ था उसमें भी सोशल मीडिया के जरिए उस लड़के को रिक्रूट किया गया था। तो ये लड़के मोस्टली कोई काम नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कई ऐसे हैं जो गन के साथ अपनी पिक्चर डालते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो जो ISI का पूरा मॉड्यूल है, जो ISI का एक कॉल सेंटर है, वो ऐसे लड़कों को रिक्रूट करता है सोशल मीडिया के जरिए। उसके बाद टास्क
1: ISI का अपना कॉल सेंटर है इस तरह के काम के लिए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के तो थे, ISI अपना अलग अब इस तरह का कॉल सेंटर चला रहा है। लेकिन कितना कठिन है, वो ब्रिंग इन डॉक्टर विक्रम सिंह वंस अगेन। डॉक्टर सिंह, हाउ डिफिकल्ट इज इट, वन टू आइडेंटिफाई वन सच अ कॉल सेंटर, टू द पीपल दे आर इन टच विद, एंड थ्री दीज यंगस्टर्स हु आर यू नो सो फ्रीक्वेंटली ऑन सोशल मीडिया? डेटा इज चीप बट देन इट्स ऑल्सो बींग यूज टू रिक्रूट स्लीपर सेल्स, मॉड्यूल्स, गॉड फॉरबिड फ्यूचर टेररिस्ट, हाउ इजी इज इट टू रेडिकलाइज देम?
2: Gaurav ji, you have put a very right question that it is extremely, extremely difficult to get hold of them, but not insurmountable. Our technology and technical prowess is such that it is easy to identify. Not easy, I would say. You have to work overtime beyond office hours and 24/7 to get hold of the links and the keywords. As also, I would not disclose everything in the arsenal, but yes, you have to work. Use the technology like machine learning, AI, and other tools that you have. And go also to have your social media patrolling. Multiple tools, multiple directions, multiple agencies. And what you have is a result, something as spectacular as this. But yes, it is very difficult, but not insurmountable.
1: And look at the arrests that are taking place. It's also almost pan-India. 44 detained in Punjab, 15 in Rajasthan, in Telangana, in Karnataka, in Maharashtra, 8 detained, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, 3 in Karnataka, Gujarat, Telangana, Himachal, J&K and Kerala, 2 each. एक तरह से देखा जाए तो देशभर में अरविंद इनका ये मकड़जाल, आतंक का ये मकड़जाल देशभर में फैला है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए कोऑर्डिनेटेड वे में ये ऑपरेशन चलाया गया। 500 से ज्यादा लोगों का डेटा सेंट्रल एजेंसियों को मिला था, उसके बाद सेंट्रल एजेंसियों ने अलग अलग स्टेट को वो डेटा दिया और उसके बाद फिर 12 अगस्त से 14 अगस्त तक ये ऑपरेशन चला था। किसी को भनक भी नहीं लगी थी और कोऑर्डिनेटेड वे में ये ऑपरेशन चला। कई जो हमें जानकारी मिली है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जिनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जिनकी संख्या 250 से ज्यादा है। और ये लगातार अभी जारी रहेगा, सोशल मीडिया पर खास तौर से सेंट्रल एजेंसियों की नजर बनी हुई है।
1: Keep tracking that story, Arvind. I will come back to you. 4 more. These operations continue. 200 have been arrested. 250 have been detained for questioning. 50 others have been picked up for questioning, not arrested yet. And there are 500 data cards and mobile numbers that are under the scanner. We'll be tracking the story very closely. Dr. Vikram Singh and Arvind, many thanks for joining me. That is all I have for you on this special edition of India First. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.

Flu season is here, and this time it's got a new name attached to it. You'll probably remember H1N1. Yes, it's back in Delhi. For this video, we've spoken with Dr. Suranjit Chatterjee, internal medicine specialist at Apollo Hospitals. The numbers tell the story here because according to reports, Delhi has already logged around 1,300 swine flu H1N1 cases this monsoon. That is nearly 6 times last year's count for the same period. The real numbers are likely to be much higher. So if your kid comes back home with a fever, how do you know? Which one is it actually? देखिए, regular flu और H1N1 दिखते identical हैं पर है नहीं. कहने को उसमें भी fever होगा, cough होगा, body ache होगा, sore throat होगा. लेकिन अगर आप थोड़ा detail में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा. तो H1N1 का fever होता है, वो suddenly spike करता है और बहुत देर तक ऊपर रहता है. It is stubbornly high. Also in certain cases breathlessness हो जाती है, deep fatigue होता है, आपको disproportionately ठंड लगेगी और muscle और joints में भी बहुत pain होगा. तो एक adult तो शायद ये differentiation बता सके, पर बच्चों को ये सारे symptoms बताना बहुत मुश्किल होता है. So your first thing to do if you have a flu this time of the year is please get tested. The only way to confirm is to actually get it tested, especially if somebody around you has already got H1N1. अब treatment की बात करते हैं. अगर आप H1N1 positive निकले हैं, तो generally ये cases आजकल mild हो गए हैं और 3 से 5 दिन में clear हो जाते हैं, just like flu. And क्योंकि एक ये viral infection है, आप ज़्यादातर इसका symptomatic treatment देते हैं. आपका fever manage करा जाएगा, आपका body pain manage करा जाएगा, आपको बहुत सारा rest करने को बोला जाएगा and fluids लेने को भी कहेंगे. लेकिन ये problematic किन cases में हो जाता है? अगर आप elderly हैं, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर if you are a pregnant woman, anyone with diabetes, heart disease or a lung condition, ऐसी conditions में डॉक्टर आपको एक antiviral पे शुरू कर देंगे, oseltamivir या फिर Tamiflu के नाम से ये बहुत famous है. अब मैंने आपको नाम बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप self prescribe कर देंगे. Let your doctor take that call. एक और सवाल आता है कि अगर आपने influenza shot या flu shot लिया हुआ है, क्या वो आपको help कर सकता है? क्योंकि seasonal flu के जो shots आते हैं, उसमें H1N1 का protection होता है, but इसका कोई guarantee नहीं है कि अगर आपने shot ले लिया, आपको infection नहीं होगा. इन्फेक्शन का जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है वो कम होगा इस शॉट से. न्यूबॉर्न्स और टॉडलर्स के वैक्सीनेशन स्केड्यूल में ये ऑलरेडी होता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या नहीं करना है. सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को फीवर है तो उसे स्कूल ना भेजें, पूरे क्लास को इम्पैक्ट करने से बचाएं. दूसरा, सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है. एंटीबायोटिक्स आर अ नो. H1N1 इज अ वायरस. एंटीबायोटिक्स डू नथिंग टू इट, दे ओनली कॉज मोर प्रॉब्लम. एंड लास्टली, Do not skip a good hand wash routine. Mask पहनना थोड़ा difficult हो जाता है, लेकिन अगर आप constantly अपने hand wash कर रहे हैं, sneeze सही तरीके से कर रहे हैं या cough सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी काफी अच्छे से बचा सकते हैं.

0: आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था?
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: use the social media influencer that is Shehzad Bhatti. And you would see, apart from Molotov cocktails, they also have sophisticated weapons like pistols, IEDs having Pakistan Ordnance Factory markings, large number of cartridges, as also the large, they have been successful in creating at least 200 recruits using 500 SIM cards. That is the cause of concern. And the change in technology is stand-alone use of CCTVs on sensitive railway stations, starting from Ambala right up to New Delhi and other places, going up to Kashmir. And the amount of investment is minimal, 2,000 rupees to 8,000 rupees, not even 10,000 rupees. So the large database, large people were first radicalized, then subjected to blackmail, and they become an active participants and willing accessories to the designs of the ISI through a social media handler. Social media, okay. I mean, influencer is for the first time that has been used by the ISI.
1: Sir, stay with me. Arvind, ye jo 200 log hirasat mein liye gaye hain, इनके बारे में क्या कोई जानकारी अभी तक निकल कर आई है? इनको अदालत में पेश किया गया है? ये कौन से लोग हैं जिनको इतनी आसानी से सोशल मीडिया पर रेडिकलाइज किया जा सकता है?
2: देखिए, ये यंगस्टर हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और मोस्टली जो गैंगस्टर हैं उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं. और अच्छा, शहजाद भट्टी खुद को गैंगस्टर बताता है, लेकिन इसका जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है. आबिद जट, अजमल गुजर जो ये ISI के हैंडलर हैं, वो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं. और जैसे ही कोई लड़का उनके कॉन्टैक्ट में आता है, फिर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद शहजाद भट्टी से कॉन्टैक्ट कराया जाता है. उसके बाद बेसिंग पर काम दिया जाता है. मसलन अगर रांची के RSS ऑफिस की बात करें तो जो दो लड़के पकड़े गए थे वो बेरोजगार थे और उनके उसके बाद शहजाद भट्टी ने उससे कांटेक्ट किया, कुछ पैसे दिए और उसके बाद दोनों लड़के जाकर पेट्रोल बम फेंकते हैं, हालांकि वो ब्लास्ट नहीं हुआ था. इसी तरह से पंजाब में जो BSF ऑफिस के बाहर ID ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी सोशल मीडिया के जरिए उस लड़के को रिक्रूट किया गया था. तो ये लड़के मोस्टली कोई काम नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. और कई ऐसे हैं जो गन के साथ अपनी पिक्चर डालते हैं, उनको टारगेट किया जाता है. तो जो ISI का पूरा मॉड्यूल है, जो ISI का एक कॉल सेंटर है, वो ऐसे लड़कों को रिक्रूट करता है सोशल मीडिया के जरिए. उसके बाद टास्क
1: ISI का अपना कॉल सेंटर है इस तरह के काम के लिए. लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के तो थे, ISI अपना अलग अब इस तरह का कॉल सेंटर चला रहा है. लेकिन कितना कठिन है, वो ब्रिंग इन डॉक्टर विक्रम सिंह वंस अगेन. डॉक्टर सिंह, हाउ डिफिकल्ट इज इट, वन टू आइडेंटिफाई वन सच अ कॉल सेंटर, टू द पीपल दे आर इन टच विद, एंड थ्री दीज यंगस्टर्स हु आर यू नो सो फ्रीक्वेंटली ऑन सोशल मीडिया. डेटा इज चीप बट देन इट्स ऑल्सो बींग यूज टू रिक्रूट स्लीपर सेल्स, मॉड्यूल्स, गॉड फॉरबिड फ्यूचर टेररिस्ट. हाउ इजी इज इट टू रेडिकलाइज देम?
0: Gaurav ji, you have put a very right question that it is extremely, extremely difficult to get hold of them, but not insurmountable. Our technology and technical prowess is such that it is easy to identify. Not easy, I would say. You have to work overtime beyond office hours and 24/7 to get hold of the links and the keywords. As also, I would not disclose everything in the arsenal, but yes, you have to work. I mean, use the technology like machine learning, AI, and other tools that you have. And go also to have your social media patrolling. Multiple tools, multiple directions, multiple agencies. And what you have is a result, something as spectacular as this. But yes, it is very difficult, but not insurmountable.
1: And look at the arrests that are taking place. It's also almost pan-India. 44 detained in Punjab, 15 in Rajasthan, in Telangana, in Karnataka, in Maharashtra, 8 detained, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, 3 in Karnataka, Gujarat, Telangana, Himachal, J&K and Kerala, 2 each. एक तरह से देखा जाए तो देशभर में अरविंद इनका ये मकड़जाल, आतंक का ये मकड़जाल देशभर में फैला है.
2: बिल्कुल, और इसीलिए कोऑर्डिनेटेड वे में ये ऑपरेशन चलाया गया. 500 से ज़्यादा लोगों का डेटा सेंट्रल एजेंसियों को मिला था. उसके बाद सेंट्रल एजेंसियों ने अलग अलग स्टेट को वो डेटा दिया और उसके बाद फिर 12 अगस्त से 14 अगस्त तक ये ऑपरेशन चला था. किसी को भनक भी नहीं लगी थी और कोऑर्डिनेटेड वे में ये ऑपरेशन चला. कई जो हमें जानकारी मिली है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जिनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जिनकी संख्या 250 से ज़्यादा है. और ये लगातार अभी जारी रहेगा. सोशल मीडिया पर खासतौर से सेंट्रल एजेंसियों की नजर बनी हुई है.
1: Keep tracking that story, Arvind. I will come back to you. Four more. These operations continue. 200 have been arrested. 250 have been detained for questioning. 50 others have been picked up for questioning, not arrested yet. And there are 500 data cards and mobile numbers that are under the scanner. We'll be tracking the story very closely. Dr. Vikram Singh and Arvind, many thanks for joining me. That is all I have for you on this special edition of India First. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.